मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 57 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र पूजा सिंह। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त

क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ अनीता तलवार के गाए इस देशगान के साथ।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल का गाया ये भजन।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए डॉक्टर सुरेश सम्राट का चिंतन प्रेम।
1: जीवन के समस्त सुखद एहसासों का नाम ही प्रेम है। प्रेम श्रेष्ठतम मूल्यों, व्यवहारों और प्रवृत्तियों के समवेत स्वरूप का एकमात्र पर्याय है। सुख, आनंद, सहिष्णुता और सद्व्यवहार का मार्ग प्रेम से ही शुरू होता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ शांति और संतोष का स्थायी आवास होता है। प्रेम से सहज सरल कुछ भी नहीं और प्रेम से महान भी कुछ नहीं होता। प्रेम के लिए न धन की जरूरत होती है न बल की। प्रेम की इस सहज सरल और सर्वव्यापकता के बाद भी जब कहीं प्रेम का अभाव दिखता है तब अचरज होता है। लेकिन यह भी सच है कि प्रेम उतना सुलभ भी नहीं रहा है जितना वह सहज है। उसकी इस दुर्लभता के पीछे वे कारण महत्वपूर्ण हैं जो व्यक्ति को प्रेम तक पहुंचने में अवरोधक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, असंतोष, बदले की भावना और असहिष्णुता जैसी प्रवृत्तियाँ ही वे अवरोधक तत्व हैं जो प्रेम को पाने और प्रेम देने के बीच रोड़ा बन जाते हैं। यूँ प्रेम के अनेक रूप बताए जाते हैं लेकिन उसका मूल तत्व एक ही है, परस्पर सद्भाव, समर्पण और सेवा। इसके अलावा आस्था, विश्वास, निष्ठा, सत्य और ईमानदारी सदैव इसके वाहक होते हैं। शुभ और मंगल कामना ही इसकी मूल सृष्टियाँ होती हैं। प्रेम के ये तात्विक अंश जहाँ भी असंतुलित और असंयत हो जाते हैं वहीं प्रेम की भावना नष्ट होने लगती है। दुर्भाग्य से वर्तमान जीवन शैली में प्रेम के अवरोधक तत्वों का प्रभाव और समावेश ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप प्रेम की पवित्रता भी प्रभावित है। यही वजह है कि प्रेम का शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर पाना अब दुर्लभ नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रेम मानव मन की कितनी सहज वृत्ति है इसकी व्याख्या कबीरदास जी ने बड़े ही सरल ढंग से की है। पोथी पड़े पड़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। कबीर ने प्रेम प्राप्ति का मार्ग भी दिखाया है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देई ले जाए। वस्तुतः प्रेम खरीदा नहीं जा सकता, वह तो अपने आप को अर्पित करता है। प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का स्मरण है। प्रेम असीम विश्वास, असीम धैर्य और असीम बल है। वह आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है और इसीलिए प्रेम की पवित्रता का इतिहास ही मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। वस्तुतः जीवन में प्रेम का वही स्थान है जो शरीर में हृदय का। जब हृदय गति रुक जाती है तो शरीर भी छूट जाता है। इसी प्रकार प्रेम का अभाव होते ही जीवन खोखला हो जाता है। नीतिकारों ने भी कहा है कि प्रेम जीवन का प्राण है, जिसमें प्रेम नहीं वह केवल मांस से घिरी हड्डियों का ढांचा है। कबीरदास ने कहा है, जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जीवन में माधुर्य का रस घोलता है। जैसे मरुस्थल के सूखे हुए ठूंठ में कोपलें नहीं फूट सकती, वैसे ही प्रेम रहित मनुष्य का जीवन कभी भी फल फूल नहीं सकता। प्रेम ही जीवन का आंतरिक सौंदर्य है। प्रेम के अभाव में सभी बाहरी सौंदर्य अर्थहीन हो जाते हैं। जिसका जीवन प्रेम के रस में पगा होता है वह संसार में कहीं भी क्यों न चला जाए उसे

0: कोई संकट नहीं आता। सामाजिक चेतना में भी प्रेम की विशिष्ट भूमिका होती है। परस्पर प्रेम के बल पर समाज में समरसता लाई जा सकती है। जिस समाज और जीवन में प्रेम होता है वह स्फूर्ति से भरा रहता है। इसीलिए जो दूसरों के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है वह सर्वत्र आदर पाता है, और इसके विपरीत जो दूसरों से घृणा करता है वह स्वयं भी तिरस्कृत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस सत्य को यों व्यक्त किया है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश सम्राट का चिंतन प्रेम, आकाशवाणी का यह ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का संगीतमयी पाठ।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। कृषि चर्चा में आज सुनिए सामयिक चर्चा, खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, सब्जी उगाने के पहले आप नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी जब बनाते हैं तो नर्सरी थोड़ी जमीन से 3-4 इंच ऊंची बनाएं और उस नर्सरी में रोग लगने के पूर्व ही उसमें आप थायरम और कार्बन डाइजिन 50-50 ग्राम एक क्यारी में आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि नर्सरी में जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें तना विगलन और तना गलन नाम का रोग आ जाता है और थोड़े से जब पौधे बड़े हो जाते हैं 15-20 दिन के 10 दिन के तब उनमें हल्के हल्के गोल गोल धब्बे पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे आते हैं और हमारी ये नर्सरी में ही पौधों को खराब कर देते हैं और फिर उसके बाद जब हम उनको खेत में ले जाते हैं तो हमारी ऐसे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और जितनी हमें फसल मिलना चाहिए उतनी फसल नहीं मिलती है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही नर्सरी से ही हमारे जो सब्जियों की कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए रोकथाम करना आवश्यक होता है। जब नर्सरी में पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, 4-5 इंच के हो जाएं, उस वक्त मैनकोजैब नाम की एक दवा आती है, 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसमें नर्सरी में छिड़काव कर दें, 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर दें तो आपका जो ये पत्ती धब्बा रोग आते हैं ये रोग नर्सरी में नहीं आएंगे और नर्सरी में पौधे आपको एकदम स्वस्थ मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। ऐसे पौधों को आप फिर अपने खेत में वहाँ उनकी रोपाई करें। जैसे इसमें नर्सरी में आप जो है खरीफ में जो सब्जियों की फसलें हैं उसमें आपका टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है और आपके ये वाली फसलें लेते हैं। इस मौसम में किसान भाई बहुत आयात में भिंडी भी लेते हैं तो इन सब फसलों में नर्सरी के बाद जब रोपाई करते हैं उसके बाद में फिर उसमें पत्ती धब्बा रोग अगर दिखाई दे तो आप मैनकोजैब नाम की दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में 1 बीघा खेत के लिए पर्याप्त होती है उसका छिड़काव कर दें तो पत्ती धब्बा रोग इसमें आपकी फसलों में नहीं आएगा। खरीफ के मौसम में विशेष रूप से खरपतवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों में निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार अगर खेत में ज़्यादा होंगे तो उसमें कीट बढ़ने की संभावना होती है। कीटों में हरा मच्छर है, माहू है, जैसिड है, एफिड है और सफ़ेद मक्खी है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है कोकड़ा रोग को फैलाते हैं या पीला मोज़ेक नाम के रोग को भी फैलाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये रोग ना अपने खेत में फैलें और हमारी जो सब्जियां हैं वो स्वस्थ और अच्छे पौधे हमारे खेत में मिलें, इसके लिए इन कीटों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कीट स्वस्थ पौधों में रोग फैला देते हैं। जो हमारे रोगग्रस्त पौधे हो जाते हैं उनका जो है रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद में ये स्वस्थ पौधों पर जाते हैं और वहाँ भी रस चूसते हैं तो जो इनके वायरस के विषाणु के इनके पेट में जाता है कीटों के पेट में, इसके बाद में ये स्वस्थ पौधों पर उस रस को छोड़ देते हैं और हानिकारक और जो रोगग्रस्त पौधों के रस चूस करके आते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे ये पूरे खेत में ये कोकड़ा रोग और पीला मोज़ेक रोग फैल जाता है।

अगर इस तरह का रोग आपको खेत में दिखाई दे तो सबसे पहले आप ऐसे रोगग्रस्त पौधों को निकाल करके और गड्ढे में डाल करके उसको मिट्टी से बंद कर दें या नष्ट कर दें, और साथ साथ दवाई का छिड़काव भी करें। दवाइयों में आप जो है मेलाथियन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन दवाई दवा जो बाजार में उपलब्ध है, इसके अलावा एक दवा और है डाइमेथोएट। इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा लें। ये दवा जो है 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। जैसे अगर 1 बीघा आपका खेत है, सब्जी लगी हुई है, तो उसमें 150 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो हमारी जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं इनमें आपका कीट नियंत्रण आसानी से हो जाएगा।

0: कृषि चर्चा में अभी आपने सुनी सामूहिक चर्चा, खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण। चर्चा कर रहे थे डॉक्टर जे सी गुप्ता। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के एक ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी,

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: ए भाई,
7: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती।

0: दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: ए भाई दर्द।

0: यथा सूचना परक कार्यक्रम दर्पण मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढसंपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान् अधिकं सुदृढीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्थ सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक संपर्कं अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिकरुचिं जनयितुं भारत को जानिये इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारतदर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तःप्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपाणि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थानकेन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयं, येन विविधराष्ट्रियसुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानकसञ्चालनप्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रियसुरक्षायाः महत्त्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवादविरोधि आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थानकेन्द्रमाध्यमेन गुप्तसूचनानां एकीकरणं विश्लेषणं कार्यान्वयनं च मादकद्रव्याणां नियन्त्रणसम्बद्धदृष्टिपत्रम् अवैधप्रवासिनां परिचयः निर्वासनं च तथा तेषां प्रतिकाराय नीतिनिर्माणम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवं च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय
2: प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक

भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त

सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही क्षणों में यानी 7:10 पर आप प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता साथी ले सकेंगे 7:20 से। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः 8:00 और 8:15 पर किया जाएगा। आज सुबह 8:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनना न भूलें दिनेश कुमार अहिरवार के गाए गीत। गुड मॉर्निंग ग्वालियर का वक्त होता है सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का गाया राग अहिर भैरव। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00 किया जाएगा और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश 10:05 से सुनवाया जाएगा।

सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से रिले किए जाएंगे बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12 बजे श्रोता साथी फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। संग्रहालय से ये कार्यक्रम 12:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। महिला कार्यक्रम में आज होगी इंदौर की प्रस्तुति दोपहर 1 बजे, साथ ही दोपहर 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत भी इंदौर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत श्रोता साथी एक बार पुनः सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे और 2:30 पर चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी सुनवाया जाएगा। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और सुनवाया जाएगा आपकी फरमाइश रात्रि 10:00। शाम 6:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 7:20 पर सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे हर गोविंद सिंह व साथी।

7:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से की मुलाकात। ग्वालियर के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव, किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में विकास के लिए मजबूत साझेदारी पर जोर। और प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के 50 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने युवा राजनयिकों से भारत की सभ्यता, संस्कृति और तकनीक को जोड़कर देश की वैश्विक भागीदारी मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिन देशों में तैनात हों वहाँ स्थानीय लोगों से सीधे जुड़ें और भारत के साथ उनके संबंधों को मजबूत करें। उन्होंने दूतावासों की डिजिटल सेवाओं को आसान, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया। भोपाल में कल समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में राज्य के विकास के लिए केंद्रीय संस्थानों, सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया गया। संस्थानों ने शोध, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। IIT इंदौर ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विशेषज्ञता और 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही। सभी संस्थानों को एक संस्थान एक संकल्प के तहत ठोस कार्य योजना और मापनीय परिणामों के साथ 2047 के विकास लक्ष्य से जोड़ने पर सहमति बनी। ग्वालियर जिले के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कृषि उपज मंडी परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, डिजिटल कृषि सेवाओं और मौसम आधारित खेती की जानकारी दी जाएगी। वहीं कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया में बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत खलिहान और घर आंगन में खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वनकर्मी प्रदेश के जंगल, जल, वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वन विभाग के 4,506 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने पर बधाई दी। इनमें 188 सहायक वन संरक्षक, 2,821 वनपाल और 761 उप वन क्षेत्रपाल समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति के बाद खाली हुए पदों को भरने के लिए नई भर्ती के आदेश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा,
1: लगभग 4,506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। हमारे अपने इस विभाग के लिए अकेले बात करूं तो 25,379 पद स्वीकृत है, 18,115 हमारे सभी पदों पर लोग काम कर रहे हैं। जब पदोन्नति का मौका मिला है, लेकिन इसके साथ साथ सभी विभागों में पदोन्नति के बाद हमने नवीन भर्ती के भी आदेश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल संबल योजना 2.0 के तहत 9,149 श्रमिक हितग्राहियों के खातों में 203 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना से अब तक प्रदेश के 1,84,00,000 से ज्यादा श्रमिकों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा मिला है। सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी योजना में शामिल किया है और संबल हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

0: सुन रहे हैं ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले 1 से 3 सितंबर तक 3 दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कृष्ण लीला, नाटक, नृत्य, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। विद्यार्थियों को श्री कृष्ण के जीवन, गीता के ज्ञान और उनके आदर्शों से भी परिचित कराया जाएगा। जन्माष्टमी का मुख्य पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा और इस दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संशोधित डाक सेवा एप्लीकेशन और डाक मित्र ऐप लॉन्च किए। उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डाक सेवा एप्लीकेशन के माध्यम से डाक विभाग की सेवाएं देश के नागरिकों के लिए आसान और अधिक सुलभ होंगी।
2: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से बने शासकीय सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने स्कूल की कक्षाओं और विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की और शिक्षकों से पढ़ाई की जानकारी ली। स्कूल में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं, खेल, पेंटिंग और संगीत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, समय प्रबंधन और लगातार मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की अपील की। प्रदेश में सरकारी पैसों की निगरानी के लिए चल रही कार्रवाई के नतीजे सामने आए हैं। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच के बाद 530 से ज्यादा आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। गंभीर मामलों में 22 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अब तक गबन और गलत ट्रांसफर से जुड़ी 223 करोड़ रुपये की रकम सरकारी खजाने में वापस लाई जा चुकी है। SFIC ने 2011 से अब तक के लेन देन की जाँच में 315 करोड़ रुपये को संदिग्ध मानकर कार्रवाई की, जिसमें 61 करोड़ रुपये के गबन की वसूली और 162 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा कराए गए। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड भेल के कालीबाड़ी मार्ग पर होगी, जबकि टीटी नगर स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। जम्बूरी मैदान में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन होगा। वहीं बड़ा तालाब के VIP बोट क्लब क्षेत्र में इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले के जरिए सेना की सामरिक क्षमता और शौर्य दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने मानेसर स्थित ट्रेनिंग अकादमी में महिला पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पहला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया है। 12 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में महिला कर्मियों को शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार संचालन, निशानेबाजी, सामरिक हस्तक्षेप और बंधक बचाव जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन शुगर एवं बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घबराहट कम होने पर किसानों में कीमतों में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। बल्लानी ने इथेनॉल उत्पादन को चीनी की कीमत बढ़ने की वजह मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि घरेलू खपत सरकार और उद्योग की प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का भी फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 जिलों में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि भोपाल समेत कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार कलेक्टर कार्यालय में कल फोटो निर्वाचन नामावली के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सतना में वार्ड 1 से 45 तक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर 24 अगस्त से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर कलेक्टर ने जिला जनगणना हस्त पुस्तिका की ग्राम एवं नगरी निकाय वार अद्यतन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गुना में TB मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय जिला चिकित्सालय में 35वीं वाहिनी NCC कैडेट्स को TB वार्ड की व्यवस्थाओं, मरीजों के इलाज और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। डिंडौरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान को सुंदर बनाने के उद्देश्य से रविवार को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। शिवपुरी में सांदीपनी विद्यालय खनिया थाना में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट अंकों में लापरवाही बरतने पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। सिंगरौली में नगर निगम द्वारा बारिश में जल निकासी के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन में सावन माह की चौथी सवारी में बाबा महाकाल ने 4 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। खंडवा में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बैतूल मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में 24 अगस्त से 4 दिवसीय भव्य राखी मेले का शुभारंभ किया गया। और पन्ना जिले में मानसून की सक्रियता के चलते लगातार बारिश का दौर जारी है। बीती रात कई क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से की मुलाकात। ग्वालियर के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव, किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में विकास के लिए मजबूत साझेदारी पर जोर। और प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये एक ग्वालियर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आज लीजिए सुनिए फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत प्रीतम का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ग्वालियर में और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन ने।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और अब लीजिए सुनिए अरिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, संगीत से सवारा है शारिब तोशी और जावेद।

0: वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

तो दोस्तों, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी पूजा के साथ। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जब वी मेट का ये खुशनुमा सा गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत इरशाद कामिल का और संगीत प्रीतम का है।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म खाकी का गीत। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है प्लेयर्स। श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ों में ये सुनिए।

फिल्म संगीत के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राउडी राठौर का ये गीत, जिसे गाया है वाजिद और श्रेया घोषाल ने। तो लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर। प्रातः के 8 बजने को अब से कुछ ही क्षणों में सुनिए समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम

0: दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:30 हो चुके हैं।

0: लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं दिनेश कुमार अहिरवार, ढोलक पर साथ दिया है योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सबसे पहले सुनते हैं झूला
1: झूला झूला।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं दिनेश कुमार अहिरवार और इनका साथ दे रहे हैं ढोलक पर योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सुनते हैं ये लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिनेश कुमार अहिरवार के गाए एक लोकगीत। लीजिए अब सुनिए ये चेतावनी।

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने दिनेश कुमार अहिरवार के गाए लोकगीत, ढोलक पर साथ दिया योगेंद्र सिकरवार ने और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान ने। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के 50 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने दूतावासों की डिजिटल सेवाओं को आसान, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर कल भोपाल में आयोजित कॉन्क्लेव में राज्य के विकास के लिए केंद्रीय संस्थानों, सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया गया। सभी संस्थानों को एक संस्थान एक संकल्प के तहत ठोस कार्य योजना और मापनीय परिणामों के साथ वर्ष 2047 के विकास लक्ष्य से जोड़ने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, डिजिटल कृषि सेवाओं और मौसम आधारित खेती की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संशोधित डाक सेवा एप्लीकेशन और डाक मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से बने शासकीय संदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, समय प्रबंधन और लगातार मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की अपील की। और मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं सुरमई सवेरा के सफर की ओर।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, मेरे यानी पूजा की तरफ से आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। एक नई सुबह का मतलब है एक नया मौका, एक नई उम्मीद और अपने सपनों की तरफ एक और नया कदम। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही भूल जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा, हाथ में चाय का गर्म प्याला और अपनों का साथ। और हाँ, एक और सबसे ज़रूरी चीज़, सच्चे दोस्तों की एक हल्की सी मुस्कान। यही तो वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को वाकई खूबसूरत बनाती हैं। तो आइए आज के दिन की करते हैं शुरुआत ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के साथ। शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन का उन दोस्तों का जो हर मोड़ पर मुस्कुराने की वजह बनते हैं, और इस जीवन का जो हर रोज़ हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज के गुड मॉर्निंग ग्वालियर में बातें होंगी दिल से दोस्ती की, सकारात्मकता की और मुस्कुराहटों की। साथ ही हम आपको देंगे देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें, काम की जानकारियां और आपके दिन में मिठास घोलने के लिए कुछ बेहद प्यारे और सदाबहार नगमे। तो बस अपनी सुबह की चाय का नशा लीजिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और बने रहिए मेरे यानी पूजा के साथ। तो चलिए आज के दिन को बनाते हैं थोड़ा और ख़ास। और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, आंखें केवल चेहरे का श्रृंगार नहीं, ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करने का झरोखा भी हैं। ये वो आईना है जो बिना बोले सब कुछ कह जाती हैं। आंखें ईश्वर की दी हुई वो अनमोल देन है जो हमें दुनिया के रंग, अपनी मुस्कुराहट, सूरज की पहली किरण और कुदरत की खूबसूरती का एहसास कराती है। हमारी आंखें न केवल इस दुनिया को देखती हैं, बल्कि हमारे भीतर के भावों, हमारी खुशियों, हमारे दुख, हमारे सपनों और हमारी संवेदनाओं को भी बिना कहे बयां कर देती हैं। पर सोचिए, अगर ये रंग हमारी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाएं तो ये दुनिया कैसी लगेगी? दोस्तों, आज यानी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य हम सभी को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और उस अंधकार को मिटाना है जो कई जिंदगियों में छाया हुआ है। हमारी एक छोटी सी पहल, मरणोपरांत हमारा एक संकल्प, किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी का नया सवेरा ला सकता है। नेत्रदान महादान है। ये एक ऐसा

उपहार है जो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया को देखने की रोशनी किसी और को दे जाता है। तो चलिए।

दूसरा कदम है अपने परिवार को सूचित करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, केवल फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं है, अपने इस नेक फैसले के बारे में अपने परिवारजनों, दोस्तों और करीबियों को ज़रूर बता कर रखें, क्योंकि मरणोपरांत नेत्रदान का अंतिम फैसला परिवार की सहमति से ही लिया जाता है। दोस्तों, तीसरा कदम है मृत्यु के बाद तुरंत संपर्क। नेत्रदान केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। किसी परिजन के देहांत के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसके तुरंत बाद नज़दीकी आई बैंक या टोल फ्री नंबर 1919 पर कॉल करके सूचना देनी होती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम उठाकर हम किसी की ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और ये एक अच्छी खबर मुझे दिखी है। गंभीर दिव्यांगों को मिलेगी ऑटोमेटिक जॉयस्टिक व्हीलचेयर, बिना मदद के कर सकेंगे आवागमन। गंभीर एवं बहु दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों का आवागमन आसान बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र में 10 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक जॉयस्टिक व्हीलचेयर आई हैं। लगभग 50,000 रुपए बाजार मूल्य वाली यह स्पेशल व्हीलचेयर पात्र दिव्यांगजनों को केंद्र के माध्यम से पूरी तरह निशुल्क वितरित की जाएंगी। इस व्हीलचेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिन दिव्यांगों के हाथ ठीक ढंग से काम नहीं करते या जिनमें मूवमेंट की क्षमता कम है, वे भी इसे बिना किसी की मदद के आसानी से चला सकेंगे। इसमें संचालन के लिए एक ही हाथ में पावर जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है, जिसकी मदद से व्हीलचेयर को किसी भी दिशा में मोड़ा और गति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर स्वाति गोयल ने भी बताया, गंभीर और बहु दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 10 ऑटोमेटिक जॉयस्टिक मिली है और ये दिव्यांगजनों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी, यानी कि निशुल्क मिलेगी, जिससे इसके जॉयस्टिक फीचर से एक हाथ के हल्के मूवमेंट से ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है।

दोस्तों, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इसकी ज़रूरत है, तो वे दिव्याशा सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। और अब एक योजना के बारे में, मुद्रा योजना, जो कि आप सभी ने सुना होगा। कारोबार के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज आपको मिल सकता है, यदि आप

व्यापार शुरू करने या बढ़ाने के लिए पूंजी की तलाश में हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसमें आपकी मदद कर सकती है। ये योजना 2015 से शुरू हो चुकी थी और छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज देना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत इसमें छोटी आय देने वाले भारतीय कारोबार शामिल हैं, जैसे विनिर्माण इकाइयां, किराना दुकान, फल सब्जी बिक्री, सिलाई बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बढ़ई, मरम्मत की दुकान, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे सेवा कारोबार, ऑटो टैक्सी व अन्य व्यावसायिक वाहन, कुम्हार का काम, आरओ वाटर प्लांट, डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन। अब क्या इस कर्ज के लिए कोई गारंटी देनी होगी, लोन लेने के लिए कोई गारंटी देनी होगी क्या? इसमें लोन 20 लाख रुपए तक के कर्ज पर गारंटी नहीं देनी होती है। पात्र ऋणों को क्रेडिट कार्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट का गारंटी कवर भी मिलता है। ये लोन अपने आप मंजूर नहीं होता। वित्तीय संस्थान कारोबार की व्यवहार्यता, आय, क्रेडिट हिस्ट्री, ऋण नीति को देखकर ही फैसला लिया जाता है। क्या सरकार इस लोन पर सब्सिडी देती है? नहीं, मुद्रा योजना खुद सब्सिडी योजना नहीं है। सरकार इसके तहत लोन की राशि पर सीधे सब्सिडी नहीं देती। अगर कारोबारी किसी दूसरी सरकारी योजना से जुड़ा है और उसमें सब्सिडी का प्रावधान है, तो उस योजना के नियमों के अनुसार अलग लाभ मिल सकता है। अब प्रश्न आता है कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज बैंक और ऋण श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर पहचान, पता, बैंकिंग व कारोबार के दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन से पहले वित्तीय संस्थाओं से दस्तावेजों की जानकारी ली जा सकती है और आवेदन करने के लिए सरकारी और निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, विदेशी बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जनसमर्थ पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं में भी शामिल है। अब इस लोन को तो हम ले लें, लेकिन इसमें ब्याज की दर क्या हो सकती है? भाई, मुद्रा ऋण की एक समान सरकारी ब्याज दर नहीं है। संबंधित संस्था, जोखिम और आवेदक की प्रोफाइल के आधार पर ही ब्याज दर तय की जाती है। इसलिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर हर व्यक्ति की ईएमआई एक जैसी नहीं होगी। ईएमआई मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी कि कितनी राशि का कर्ज लिया है, ब्याज दर कितनी है और कितने समय में कर्ज वापस चुकाना है। तो दोस्तों, यदि आप अपना बिज़नेस बढ़ाने की सोच रहे हैं या नया बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसमें आपकी मदद कर सकती है। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपको एक और गीत सुनवा दूँ, तो लीजिए, सुनिए।

तो दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार था और इसी के साथ अब सावन जाने को है। लेकिन उससे पहले आएगा भाई बहन के प्यार का त्यौहार, यानी कि रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का ये पर्व जो है, ज़िले के डाकघरों और कुरियर सेंटर्स में राखियों की आवक इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है इसने। घर से दूर रह रहे भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र से सुनी ना रहे, इसके लिए बहनों ने राखियां भेजना शुरू कर दी है।

जिले में डाक और कुरियर के जरिए रोज़ाना करीब 15,000 राखियाँ पहुँच रही हैं। तो दोस्तों, भाई बहन का प्यार तो है ही ऐसा, और जब भाई दूर हो तो उसे लिफाफे में एक राखी भेजना और छोटा सा प्यारा सा पत्र लिखना जिसमें अपने भाई के लिए प्यार भेजना, कितना भावुक क्षण होता है, ये बहनें ही जान सकती हैं और उनके भाई जान सकते हैं। लेकिन मैंने ये रक्षाबंधन का टॉपिक इसलिए छेड़ा है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के इस पर्व पर डाक से राखी भेजने वाले लोगों की सुविधा के लिए ग्वालियर डाक संभाग ने अवकाश के दिन भी राखी मेल की बुकिंग की व्यवस्था की है। यानी कि दोस्तों, कल 26 अगस्त को अवकाश होने के बावजूद निर्धारित डाकघरों में कार्यालयीन समय के दौरान राखी मेल की बुकिंग की जा सकेगी। डाक विभाग के अनुसार लश्कर प्रधान डाकघर, मुरार प्रधान डाकघर, लश्कर सिटी ग्वालियर, RS दतिया MDG और डबरा उप डाकघर में राखी मेल की बुकिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो फिर आप कल भी राखी भेज सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं भेजी है तो। और जाने से पहले आपको सुनवाती हूँ एक और गीत।

तो दोस्तों, इस गीत की तरह ही हम भी आपसे अपने खुशियां और गम बांटते रहेंगे और यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए मुझे दीजिए अनुमति, आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित जसराज का गाया राग अहिर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गाया राग अहिर भैरव। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।
1: सुबह के 10 बजने को आलेख नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से लोगों को राहत मिली है और खरीफ फसलों की स्थिति भी फिलहाल सामान्य बनी हुई है। इस साल अभी तक जिले में औसतन 646 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 460 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर आए हैं और बागली के पास गुनेरी नदी में बाढ़ से सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से प्रभावित हुआ। देवास शहर की कुछ निचली बस्तियों में भी जलभराव की स्थिति बनी। बारिश के साथ अगर खेती की बात करें तो किसानों के लिए फिलहाल स्थिति संतोषजनक है। जिले में सोयाबीन की बोवनी के लिए 3,98,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि करीब 4,06,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई है। इसके अलावा करीब 3,38,000 हेक्टेयर में कपास, तुअर और मक्का जैसी फसलें बोई गई हैं। हाल की बारिश से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। देवास में बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और मुख्य

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेशवासियों के नाम संदेश को पढ़कर सुनाया। इसी बीच ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देवास के खादी उत्पादन केंद्र में एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण युवाओं, बेरोजगार युवक युवतियों और पारंपरिक कारीगरों को ग्रामोद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं और उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इसी कड़ी में जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जन प्रतिनिधि और अधिकारी लोगों से सीधे आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो मामले मौके पर हल नहीं हो पाते उन्हें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कर आगामी शिविर से पहले निराकृत करने की व्यवस्था की गई है। शिविरों में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता अभियान चल रहा है, जिसके तहत श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और कलश रथ यात्रा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही है। करीब 20 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से संत रविदास के जीवन, आदर्शों और सामाजिक समानता का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न मंदिरों और रविदास मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देवास में जागरूकता अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में अलग अलग ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को CPR की ट्रेनिंग बीते दिनों दी गई, जिसमें अचानक सांस या धड़कन रुकने की स्थिति में किसी व्यक्ति को शुरुआती मदद देने की तकनीक बताई गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थिति में समय पर मदद पहुंचाने के लिए लोगों को तैयार करना है। अब बात कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जिले में सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और बिना अनुमति सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने पर रोक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देवास के एक निजी संस्थान में उद्यमियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यमियों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी गई। सेमिनार में विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और स्थानीय MSME उद्यमी शामिल हुए। रोजगार के मोर्चे पर भी जिले में युवाओं के लिए पहल की गई है। देवास में रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों ने युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और करियर काउंसलिंग की जानकारी दी। निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। और आखिर में बात बुजुर्गों के अधिकारों से जुड़ी पहल की। देवास के वृद्धाश्रम परिसर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुजुर्गों को सुरक्षा, भोजन और शिक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने का संकल्प दिलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि मानवाधिकार किसी खास वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी अधिकार है। देवास जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख था नितिन गुप्ता का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए व्हाट्सएप फरमाइश।

कविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा आविका और विशाखा सोनवने। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म आराधना का ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, और व्हाट्सएप पर अगला मैसेज आया है इस गीत के लिए। फिल्म का नाम है अभिलाषा, इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। मैसेज आया है मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु सागर बलूजा, और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, देवाश्री और कीर्ति भारती। ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्रेखा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। दत्रेंगी भाटाबारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। सियेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान, मुक्कम पोस्ट फुलचिनचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और इनके चाचा चाची। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुन लेते हैं ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश मेरे यानी पूजा के साथ। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा का ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार की। सुनने के लिए मैसेज किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर। मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।

ग्राम बहरामपुरा टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, अशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, इंद्रिया विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया और गौरैया चौक अम्बाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, बक्सर से आर एस डी वली अंसारी।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे जिसे गाया था किशोर कुमार ने, और सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया था गांव कलाना भद्रा राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युद्धव कड़वासरा, ज़िला वारंगल से मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फेसियुद्दीन, आयशा तबस्सुम और ज़ुबेरिया, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फदान लल्ला फरहान लल्ला, समायरा और आज़मीन गुड़िया। भुचो कैचिया भटिंडा से प्रेम सिंह।

0: जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम, दमन और अभिजोत। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। और दोस्तों लीजिए अब सुनिए फिल्म डॉन का ये गीत, जिसे सुनने के लिए ख्वाहिशमंद है हमारे ये श्रोता। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर। कश्मीर से पीरजादा मिराज, नजामुद्दीन, कैसरुद्दीन और उनके साथी। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामनी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

फिल्म दुश्मन का ये गीत सुनना चाहते थे हमारे ये श्रोता। सहावर रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ज़िला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला गली से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुललाल और अविराज सिंह। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। साथ में हैं धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। ग्राम बगबुड़वा पठरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। और अब लीजिए सुनिए फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। इनके साथ है ऋषभ मरावी। छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। तनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और रॉबिन राणा। कोपरगांव से सुरेश मरोदे, वर्षा मरोदे। शेवगांव से श्री राम गोंधली और वर्षा गोंधली। नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांडी।

सच्चा झूठा इस फिल्म के गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे इन श्रोताओं ने, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश ऋषिता, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, शिव मंदिर दाल मंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव, सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली और अनामिका शर्मा। पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म का नाम है कालिया। और इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, आसमा नाज अंसारी और बेगम प्रमिला जाटव, जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव, गोरैया चौक अम्बाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, जमानिया ज़िला गाज़ीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से अशोक जाटव, नवी दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे। लीजिए सुनिए इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी पूजा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम को समाप्त करने की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में इस घंटे की खास खबरों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

0: जाएगी। वहीं जम्बूरी मैदान में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बड़ा तालाब के बोट क्लब क्षेत्र में सेना की सामरिक क्षमता और शौर्य को दिखाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय है रिश्ते। रिश्ते यानी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और जरूरी चीज है। हम अकेले पैदा होते हैं लेकिन रिश्तों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती है। परिवार, दोस्त, प्रेम, सहयोग, ये सब रिश्ते ही तो हमें सहारा देते हैं, खुशी देते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। रिश्ते हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। जब कोई हमारी बात सुनता है, हमारी खुशी में शामिल होता है या गम में कंधा देता है, तब हमें लगता है कि हम अकेले नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन से भी ये पता चला है कि स्वस्थ रिश्ते रखने वाले लोग ज़्यादा खुश, स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। अकेलापन आजकल एक बड़ी समस्या बन चुका है और अच्छे रिश्तों की या अच्छे रिश्ते ही इसका सबसे अच्छा इलाज हो सकते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब पहले से जन्म से हमारे साथ में होते हैं, सबसे गहरे रिश्ते होते हैं। ये हमें मूल्य, सुरक्षा और पहचान देते हैं। वहीं मित्रता, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना शर्त हमारे साथ रहते हैं। मित्रता यानी दोस्ती रिश्तों का वो रूप है जहां हम ज़्यादा खुश और खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह से प्रेम के संबंध होते हैं। जीवन साथी का रिश्ता सबसे गहरा होता है जिसमें प्यार, विश्वास, सम्मान और समझ का मेल होना बहुत ज़रूरी होता है। और सामाजिक या पेशेवर रिश्ते जैसे सहकर्मी, पड़ोसी, गुरु, शिष्य, ये भी हमारी ज़िंदगी को बैलेंस्ड बनाते हैं। तो आज का हमारा ये विषय है कि रिश्तों को हम कैसे निभाएं। और हमारे जो नए श्रोता है हम उनको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। शुरुआत करते हैं, हमारे पहले कॉलर कौन है हम उनसे बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: सर दुले सिंह यादव बोल रहा हूँ, सातचा जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से।
2: यादव जी क्या हाल चाल है?
3: सर बढ़िया है, आप कैसे हो सर?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो संबंध जो भाई बहन के रिश्ते हैं और दूसरे रिश्ते हैं, हम उनको कैसे निभाएं?
3: सर ये प्रेम होना चाहिए सर आपस में, और प्रेम के साथ में एक दूसरे का विश्वास भी होना चाहिए सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, रिश्तेदारी में यानी प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
3: हाँ, विश्वास नहीं है तो सर किसी प्रकार का भी कोई मतलब नहीं है सर। बंधन हो या कोई दोस्ती हो, उसमें विश्वास बहुत जरूरी है सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि भाई बहन के रिश्ते का त्योहार आने वाला है, तो हाँ, इसकी तैयारी आपकी किस तरह से चल रही है?
3: सर तैयारी यही, अभी तो जो बहने को ला रहे हैं सर लोग, और हमारी भी एक बहन है सर, वो भी आएंगी सर राखी के दिन आएंगी। वो तो
2: जी जी जी
3: पास में ही है सर, यहाँ आगर में ही। हाँ, तो वो उनको जो परिवार भी संभालना पड़ता है, इसलिए वो सिर्फ राखी के दिन आएंगी सर।
2: चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन रक्षाबंधन का गीत, सुनिएगा रेडियो सेट पर आपके।

0: जी छिपरी से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी सर।
0: अच्छा ये बताइए कि क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया है सर।
0: अच्छा देखिए आज का हमारा विषय है, बात आपकी की थी हमारे में रिश्ते, तो
1: हाँ
0: रिश्तों के
1: जी
0: बारे में आप बताइए कि रिश्तों में क्या चीज़ सबसे खास है कि जिससे रिश्ते निभाए जा सकें?
1: अब सर, रिश्ते तो ऐसा कि प्रेम भाव से रहने चाहिए और किसी से माने गलत नहीं बोलने चाहिए, जो रिश्ते में माने टूट नहीं आनी चाहिए, और अपने हिसाब किताब से चलो तो रिश्तेदारी में कभी दरार नहीं पड़ेगी सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब हम आपको गाना सुनवा देंगे, कुछ और भी कहना चाहेंगे?
1: और सर ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी माने बहन हो, भाई हो, भाभी भैया हो, दादा दादी हो, उनसे अच्छे प्रेम भाव से बोलो बतराओ, और
0: बिल्कुल,
1: देश के लिए अच्छा रहेगा, श्रोता से यही कहना चाहता हूँ सर।
0: क्या बात कही है आपने। चलिए आपने इतनी अच्छी बात कही तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये बहुत अच्छा गाना, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। अम्बेडकर चौक तेगर वार्ड खोरई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद।
0: परमानंद जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया जागीर सर।
0: और कुछ नई बात बताइए। देखिए, आज का हमने विषय चुना है रिश्ते। हाँ, रिश्तों में सामंजस्य कैसे बिठाएं, रिश्ते कैसे निभाए जाएं, रिश्ते को किस तरह से क्या करना चाहिए कि जिससे दूर तक निभाए जाएं। और हम
1: जी, रिश्तों से सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए तो वक्त वक्त पर जो कार्यक्रम होते रिश्तेदारी में वहाँ शामिल हो, उनको राय सलाह भी दे, उनसे राय सलाह भी ले हर काम करने की प्रति। कोई
0: जी
1: काम हो तो उनसे थोड़ी राय सलाह लेने में रिश्तेदारों से कोई परेशानी नहीं है।
0: बिल्कुल। देखिए, हर रिश्ता हमें जन्म से मिलता है। मामा
1: हाँ,
0: मामी
1: उनको
0: चाचा
1: बुलाए,
0: चाची, है
1: जैसे
0: ना? जी
1: भाई बहन
0: जी
1: का त्योहार आ रहा है अभी,
0: हाँ हाँ
1: तो उसमें उनको अच्छा बहन को आमंत्रित कर लें तो
0: बिल्कुल
1: रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, हर रिश्ता हमें जन्म से मिलता है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी,
1: जी
0: माता पिता। लेकिन एक रिश्ता होता है दोस्ती का। दोस्त हम खुद बनाते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, है ना?
1: रक्तदान कर देते हैं कोई, और रिश्ते में जैसे आप किडनी वगैरह अंग दान कर दो तो वो भी रिश्ते बन जाते हैं अनजाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये बहुत खूबसूरत गाना, सुनिएगा जरूर।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, जरा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
1: जी लक्ष्मण सिंह चंदे। बिल्कुल
0: लक्ष्मण जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे। जी
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बोल रहे हो?
1: ग्राम बोतराई तहसील बसरिया जिला दमोह। बस
0: दमोह से बोल रहे हो? और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर।
0: बढ़िया है, बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए, आज का हमारा विषय है रिश्ते, संबंध।
1: संबंध
0: रिश्ते, संबंध, जिस तरह से रिश्ते हमारी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ हैं। जैसे कि हम अकेले पैदा होते हैं, लेकिन रिश्तों के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ अधूरी रहती है। परिवार, दोस्त, प्रेम, सहयोग, ये सब रिश्ते ही तो हैं जो हमें सहारा देते हैं। इस पर
1: बिल्कुल
0: आप क्या
1: सत्य
0: कहना
1: है।
0: चाहते हैं?
1: जैसे मान लो सर भाई बहन का रिश्ता है, इसको
0: बिल्कुल
1: भी आप मान लो जैसे कम से कम जैसे आपकी बहन है तो सर साल में एक दो बार तो आप उनके पास जाइए।
0: बिल्कुल, रिश्ते निभाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जी,
1: जी सर, और आने जाने से ही रिश्ते सर कायम रहते हैं।
0: सही बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो देखिए, रिश्तों में हमें सुरक्षा भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, और परिवार भी बनता है ना? तो इन सबको संजोने के लिए हमें आपस में कोशिश करना चाहिए कि रिश्तों को निभाएं, है ना? और क्या किया जा सकता है?
1: बस यही कहेंगे सर की सब और जितने भी रिश्तेदार से सब भाईचारा बनाए रहें, बोलचाल अच्छा रखें, कभी
0: बिल्कुल,
1: भी उनसे बुराई ना करें। इस
0: हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, आपने इतनी अच्छी
1: बात
0: जा
1: सर रिश्तेदारी में कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लेन देन कर लेते वो नहीं करना चाहिए, मन में
0: अच्छा
1: करार आ जाती
0: अच्छा नहीं, साफ सुथरा लेन देन करना चाहिए। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा जरूर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सलोनी चौहान बोल रही हूँ, रतलाम से।
0: रतलाम से सलोनी जी, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया साहब, मतलब एकदम खुशी के मारे बोला ही नहीं जा रहा।
0: देखिए, हम गाना तो सुनवाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय लिया है रिश्ते। रिश्ते संबंध जो होते हैं, तो सलोनी जी देखिए कि कुछ रिश्ते जो होते हैं हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं, जैसे भाई बहन और माता पिता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, है ना? हाँ, या हम अनजाने में कुछ रिश्ते बन जाते हैं कि किसी का ब्लड हमने लिया या किसी को ब्लड दिया, अंगदान लोग करते हैं उससे भी रिश्ते बन जाते हैं। तो अब जो बने बनाए रिश्ते हैं उनको हम किस तरह से निभाएं?
1: नहीं साहब, मेरा कहना है जी कि जब लड़की किसी बच्चे की माँ बनती है तो उसके ऑटोमेटिक ही रिश्ते बन जाते हैं। ये मम्मी है, ये पापा, ये बुआ, ये मौसी, ये रिश्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब हम पृथ्वी पे किसी को दोस्त बनाते हैं ना, तो वो किसी सुदामा और श्री कृष्ण से कम नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: और उसको निभाना अति आवश्यक है। मेरी राय में तो वही सच्चा दोस्त है जो सुख दुख में काम दे।
0: बिल्कुल सही बात है कि सुख दुख में जो साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो हम आपको सुना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा।
1: जावेद भाई, बहुत बहुत थैंक यू,
0: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवी दीन अहरवार बात कर रहा हूँ
0: देवी दीन जी, क्या हाल चाल है?
1: जी। जी बढ़िया है, आप ठीक हो?
0: अब बिल्कुल ठीक ठाक है। देवी दीन जी, आज हमने जो विषय लिया है वो रिश्ते लिया है, ठीक
1: जी
0: है?
1: जी
0: बात आपकी गीत हमारे में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप उसमें शामिल हुए हैं। तो हमारा मानना यह है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं हमें बाय बर्थ मिलते हैं, यानी जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम खुद बनाते हैं, जैसे दोस्त या ब्लड डोनेट कर दिया तो कुछ ऐसे दोस्त भी बन जाते हैं अनजाने में। कुछ हम किसी को मौसी, किसी को चाचा, किसी को बोलते हैं, ऐसे भी रिश्ते बनते हैं। तो इस बारे में रिश्ते निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पुराने रिश्ते भी बने रहें और नए रिश्ते भी बने रहें?
1: जैसे हमारा रिश्ता है, मान लीजिए हमारा साढ़ू भाई है और हमारा दोस्त वगैरह है, तो ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए कि ताकि वो बर हमेशा काम आ सके और सभी लोगों से मिल के चलना चाहिए और नॉर्मल बात करना चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में काम आना चाहिए, सबसे हिल मिल के चलना चाहिए, क्योंकि समय न जाने कब कहाँ इंसान को कहाँ ले जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, और समय के
1: और
0: साथ में हमें चलना चाहिए।
1: हाँ जी, और दोस्त तो क्या दुश्मन से भी काम पड़ जाता है जी, है कि नहीं? तो बस समय कोई देख नहीं आया है, प्रेम से रहें और अपने परिवार में हिल मिल से रहें, किसी से झगड़ा ना करें। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। हमारे अगले श्रोता कौन है, हम उनसे बात करते हैं।

0: हेलो, कार्यक्रम बाद आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया भैया, अच्छे हैं।
0: योगेश जी, हमने आज का विषय लिया है रिश्ते कैसे निभाएं, क्योंकि
1: जी।
0: रिश्ते बहुत सारे होते हैं और रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी है। कि रिश्ते इसलिए ज़रूरी है कि हमें सामाजिक पहचान देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमें हमारे सुख दुख के साथी होते हैं रिश्ते। तो हम किस तरह से रिश्तों को निभाएं?
1: अब देखिए भैया, मानव जीवन हम सामाजिक जीवन में निवास करते हैं
0: जी
1: और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। माँ बाप का हो गया, भाई बहन का हो गया, पति पत्नी का हो गया, बच्चों का हो गया, और अभी रक्षाबंधन भी आने को है। तो हर एक रिश्ते का एक अपना जो महत्व होता है और उसको उसी मर्यादा के साथ में निभाना चाहिए। माँ बाप
0: बिल्कुल
1: है तो हमेशा आदर से बात करे, बच्चे हैं तो हमेशा स्नेह से पेश आए, और हमारे समकक्ष हैं तो उस प्यार से मतलब पेश आए।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो अब
1: जी
0: इतनी अच्छी बात बताई है तो क्यों ना हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनवाएं,
1: बिल्कुल, स्वागत है भैया।
0: है ना? गाना सुनिएगा।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है। कौन बोल रहे
1: मास्टर जी
0: हैं?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंजवासोदा से।
0: जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। देखिए,
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: आज का हमारा जो विषय है वो है रिश्ते कैसे हम निभाएं।
1: रिश्तों को
0: हाँ, रिश्तों को हम किस तरह से निभाएं, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, तो उनको निभाने का क्या तरीका है, किस तरह से हमारे संबंध बने रहें?
1: तभी तो ऐसा है, देखो रिश्ते अगर निभाना है तो शांति पूर्वक काम करें, उन्हें समझाएं बुझाएं। कोई भी ऐसी चीज हो जैसे कोई मार्ग पे गलत चल रहा है उसको भी समझाएं कि
0: और जो
1: भाई
0: सही
1: ऐसा
0: चल
1: ना करें,
0: अच्छा और जो सही चल रहा है उसको उसको भी
1: उसको भी सही चल रहा है
0: समझाएं।
1: उसको भी थोड़ा बहुत समझाएं कि भाई इस मार्ग पे चले आप,
0: नहीं, जैसे कि कोई
1: इससे
0: अच्छे
1: आपकी
0: काम
1: हानि हो
0: कर
1: सकती है।
0: कोई अगर अच्छे काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, तो उसको भी समझाएं कि तुम क्या समझाएंगे।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वह आधार पर काम करने के दौरान भी उसको समझाया अगर गलत कर रहा है तो
0: हाँ, और सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, आपने इतनी अच्छी बात बताई है, तो क्यों ना हम आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनवाएं।
1: बिल्कुल सर।
0: सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये खूबसूरत गाना।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, आपको नमस्कार। कार्यक्रम बात आपके गीत आपके
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे
1: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे सर कार्यक्रम चल रहा है भोपाल से।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सर कार्यक्रम।
0: जी, तो कौन बोल रहे हैं?
1: सरम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर मेहरबान सिंह नाल बोल रहे हैं सर। जी को नमस्कार सर।
0: नमस्कार मेहरबान सिंह, इतना अच्छा नाम है आपका, तो आप तो सब पे मेहरबानी करते होंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: आज हमारा विषय है रिश्ते कैसे निभाएं, संबंधों को हम किस तरह से निभाएं।
1: देखिए सर, ऐसा है कि रिश्ते तो निभाने चाहिए।
0: कैसे निभाना?
1: निभाएं से जीवन में अच्छा लगता है।
0: तो किस तरह से निभाना चाहिए? प्रेम से निभाना चाहिए, लड़कर निभाना चाहिए?
1: नहीं नहीं जी, के सर जी कैसा माहौल है, ऐसी बात है, क्योंकि प्रेम भाव से, प्रेम भाव बना के रखें रिश्तों से, मित्रों से, सभी से, तो जीवन में थोड़ा अच्छा लगता है सर जी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और रिश्ते वही होते हैं जो हमें, सच्चे दोस्त भी वही होते हैं जो बिना शर्त हमारे साथ में रहते हैं। मित्रता रिश्तों का वो रूप है जहां हमें सबसे ज्यादा खुद को खुलकर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात हकीकत है सर,
0: है ना। इसी तरह से माता पिता का, भाई बहन का, दादा दादी का, ये भी रिश्ते ऐसे हैं जो हमें जन्म से मिले हैं। ये ऐसे
1: बहुत सुंदर विचार, बहुत हकीकत बात है सर,
0: है ना। ये गहरे रिश्ते हैं जिनको हम, हमें मूल सुरक्षा और पहचान देते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारे हम किस कहाँ कौन किसके क्या हैं, ये सब हमें जन्म से मिलता है।
1: सही बात है, बिल्कुल हकीकत। या हमारे माता पिता हों तो माता पिता के भी रिश्ते बहुत गहरे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बहनों और भाइयों के परिवार का पूरा, सभी के बहुत रिश्ते गहरे होते हैं
0: जी। इसी तरह से क्या होता है कि जीवन साथी या पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो भी बहुत गहरा होता है। इसमें प्यार, विश्वास, सम्मान और समझ का मेल होना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत हकीकत बात, और बहुत आज का विचार पे हम बहुत खुश हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और हम तो सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे, सभी रिश्तों को, जो अपने माता पिता हों, भाई बहनों, मित्रों, सभी रिश्ते प्रेम भाव से निभाने चाहिए जीवन में।
0: बिल्कुल। और कुछ रिश्ते पेशेवर होते हैं जैसे कि हमारे सहकर्मी, पड़ोसी, गुरु, शिष्य, ये भी हमारे जीवन को संतुलित बनाने में बहुत मदद करते हैं।
1: बिल्कुल करते हैं।
0: तो चलिए, आपने इतनी अच्छी बात बताई तो हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: कौन सर बात कर रहे हैं सर?
0: मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ। तो इन सबको निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे आदर पूर्वक जिसका जो मकाम है, छोटे हैं तो छोटों का और बड़े हैं तो बड़ों का, उनको वो सम्मान रहना चाहिए कि जिसमें कि उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील ना हो।
1: जी सर बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार। आपके विचार पे बहुत अच्छा लगा सर।
0: धन्यवाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में अब तक लगभग 13,000 गुना की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय एवं निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। गौरतलब है कि श्री गोयल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 अगस्त तक जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, डिजिटल कृषि सेवाओं और मौसम आधारित खेती की जानकारी दी जाएगी। देश में चीनी के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का भी फैसला किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। और मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। योगेश की शब्द रचना है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता। ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रीति, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से इसी गीत को पसंद किया है शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। तो आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं दिल और मोहब्बत फिल्म की वो रचना जिसे तैयार किया है वर्मा मलिक ने, ओपी नैयर का संगीत है, आवाज़ आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की। पसंद आप सब श्रोताओं की है। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन प्रणीत और वैशाली, शैलेश और सुमित के साथ कुमारी ध्वनि इस गीत को सुनना चाह रही हैं नागपुर से। इसी गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत के श्रोताओं ने। ये हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। बक्सर से इसी गीत के लिए फरमाइश आई है जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष और आयुषी के साथ सानवी की। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल और मोहब्बत फिल्म का ये नगमा।

गीता रॉय की। संगीत बुलो सीरानी का है, गीत लिखा है हिम्मत रॉय शर्मा ने, पसंद आप सब श्रोताओं की है। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाहते हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया का पत्र भी हमें मिला है। इसी गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने भी। ये हैं ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गाराम साहू। तो चलिए इन सब की पसंद पर सुनते हैं जोगन फिल्म का ये नगमा।

और अब लीजिए सुनिए अनमोल घड़ी फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है सुरैया ने। नौशाद का संगीत है और इस गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर के श्रोताओं ने। ये हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। इसी गीत को जयराज प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने भी पसंद किया है। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। बड़वाह के श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। ये हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। तो आइए सुनते हैं अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में रेशमी रुमाल फिल्म का वो गीत जिसका संगीत तैयार किया है बाबुल ने, गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। 12 राजस्थान के श्रोता इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। गांधी चौक बाड़मेर के श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। ये हैं बबलेश पवार, डैनी और मास्टर मनीष। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित के साथ संगीता आर्य। तो आइए सुनते हैं रेशमी रुमाल फिल्म का ये गीत।

सरस्वती चंद्र इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। धामणी मानोरा से हमें पत्र मिला है, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे का इसी गीत को पसंद किया है। नारायण भाऊ, विट्ठल राव, ललिता रानी खर्चे, परी, संजना, गणेश, कार्तिक खर्चे, ब्रोनो, उषा, सोरना खर्चे इस गीत को सुनना चाहती हैं। इसी गीत को पसंद किया है स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने। ये पत्र हमें मिला है बिस्वा से। तो आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल। ये है पता हमारा, और पिन कोड है भोपाल का 462002। तो आप भी हमें पत्र लिखकर बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं समेटते हैं। अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त रानू शर्मा को। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
6: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
7: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी सातवीं कड़ी।

अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया और रतन पट्टे की जमीन पाकर खुश थे और अपनी मेहनत से उसे खेती लायक बनाया। रतन के भाई करण ने रतन को दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे छल पूर्वक दीवान और करण ने मिलकर 25,000 कर दिया। रतन को ये बात पता चली तो वो स्तब्ध हो गया। इसी बीच जमुनिया गर्भवती हुई, उसने पुत्री को जन्म दिया। उसके जन्म से पहले ही रतन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद करण ने जमुनिया को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया और उसका बेटा हथिया लिया। पास के एक गांव के छुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। गांव में अस्पताल, सड़क, स्कूल, पानी इत्यादि की कमी जमुनिया को खलने लगी और इसके लिए वो अशिक्षा को जिम्मेदार मानते हुए उसने पढ़ने का निश्चय किया। वहां के गुरुजी से मिली। इसके बाद आगे हमारी आज की गाथा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा अतीत क्या था, और अगर मामला देश की सामाजिक और आर्थिक परिवेश का हो या राजनीतिक वातावरण का, तो ये बात यकीनन सच लगती है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो अर्जुन और दुर्योधन का महाभारत हो, चाहे वो अलेक्जेंडर का यूनान, चाहे वो जूलियस सीजर का रोम, या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के उत्थान या पतन का हो, या आज के भारत में स्थित हमारे मास्टर जी यानी कि जमुनिया के गुरुजी भी कुछ ऐसा ही मानते थे। गुरुजी को विश्वास था कि अगर जमुनिया के अंदर की चिंगारी को सही दिशा मिलती है तो ये जरूरी है कि पहले जमुनिया गांव की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की जड़ को और उसके तमाम कारणों को अच्छी तरह समझ ले। फिर क्या था, मंझे हुए कुम्हार की तरह

0: जमुनिया की शक्ल बदलने लगी।
1: गुरुजी, गुरुजी।
2: हाँ।
1: प्रणाम गुरुजी, मैं आ गई।
2: अच्छा, प्रणाम प्रणाम।
1: ये रहा कागज। हाँ। जे कलम और जे पेंसिल। आज शुरू करते हैं। अच्छा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ना लिखना जल्दी से सीख जाऊं।
2: अरे भाई, आशीर्वाद तो हमारा सदैव तुम्हारे लिए रहेगा जमनिया। हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई की शुरुआत स्लेट व चौक से ही करना होगी है। देखो, शुरू शुरू में कई बार अभ्यास करना पड़ता है। हाँ। इसके लिए स्लेट ही अच्छी रहती है और चौक ही अच्छी रहती है। अरे भाई, क्योंकि कागज जरा खर्चीला है ना, इसलिए।
1: तो फिर आज से पढ़ाई शुरू नहीं होगी गुरुजी?
2: हाँ हाँ, अरे भाई क्यों नहीं होगी, आज ही से नहीं बल्कि अभी से शुरू होगी। देखो, अपना कागज कलम तुम अपने पास रखो।
1: जी।
2: ये देखो, ये मेरे पास चौक और ये स्लेट है।
1: जी।
2: हाँ, तो इधर चार्ट पर देखो।
1: जी।
2: ये रहा आ। अब तुम्हें इसकी नकल करके स्लेट पर लिखना होगा। ये लो।
1: जी। ये रहा अ।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो साथ में बोलती भी रहो तुम। मैं देखो आ।
1: जी।
2: थोड़ी गड़बड़ है, पहले इस तरह देखो, आड़ी लाइन।
1: जी।
2: फिर खड़ी लाइन।
1: जी।
2: तब बनेगा आ।
1: हाँ जी, ये रहा
2: ये कुछ ठीक है। अब इसके आगे खड़ी लाइन, खड़ी लाइन और खींचोगी तो बनेगा आ।
1: जी ठीक है, ये रहा
2: तुम बहुत जल्दी कर रही हो। देखो देखो देखो, आराम से अच्छे से साफ साफ लिखने की कोशिश करो।
1: जी अच्छा गुरुजी। ये रहा अ, और इसके आगे ये खड़ी लकीर, ये रहा आ।
2: अरे भाई, इतनी बड़ी लकीर नहीं बनाते, उसे भी आ के आकार की ही बनाना पड़ती है।
1: हाँ जी।
2: हाँ,
1: इस बार कुछ बात बनी क्या गुरुजी?
2: हाँ, कुछ बात बनी तो है।

0: गई?
1: जी।
0: अरे कैसी रही आज की पढ़ाई जमुनिया?
1: लिखना फिर उसको आ बनाना सीखा है।
0: हाँ?
1: अच्छे बन नहीं रहा था बाबा, पर छोड़ूंगी नहीं, आज रात को घर पर ही अभ्यास करूंगी।
0: हाँ भाई, अरे कर भाई कर, इस उम्र में तूने पढ़ाई की ठानी है तो कर ही डाल।
1: बाबा
0: हाँ?
1: हम चिरैया को भी पढ़ाएंगे।
2: तब तो बड़ा अच्छा लगेगा ना माँ, हम दोनों पढ़ेंगे।
0: तुम्हारी इच्छा पूरी हो बिटिया, पूरी हो।
1: बस यही आशीष दो बाबा।
0: अरे हाँ हाँ, आशीष है आशीष है।
3: गुरुजी, गुरुजी।
4: अरे आओ आओ जमनिया, आओ।
1: प्रणाम गुरुजी।
4: प्रणाम प्रणाम।
1: मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई गुरुजी।
4: अरे कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और काम नहीं है बेटा, जैसे ही तुम्हें समय मिले आ जाया करो
1: जी।
4: बार बार लिखने से जल्दी सीख जाओगे।
1: जी अच्छा गुरुजी। गुरुजी ये देखिए मैं कुछ लिख कर लाई हूँ।
4: अरे अरे अरे वाह वाह वाह, अरे भाई तुमने तो बड़ा अच्छा लिखा है, लगता है घर पर भी तुमने खूब लिखा है।
1: जी गुरुजी, मुझे पढ़ना लिखना सीखना ही है।
4: अरे शाबाश बेटा शाबाश। भाई देखो आज तुम्हें हम अंक लिखना सिखाएंगे हैं।
1: जी।
4: एक

0: ये देखो एक है
1: जी
0: और ये दो और ये तीन है।
1: ये तो लिखना थोड़ा आसान लग रहा है ना गुरुजी?
0: हाँ बेटा, लेकिन इन अंकों की दुनिया बड़ी चतुर होती है। खैर, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी तो तुम इसको जरा बार बार लिखो।
1: जी गुरुजी।

0: शाबाश।
1: अच्छा लिखा ना गुरुजी।
0: बहुत अच्छा, बहुत।
2: पंखे ले लो बाबू।
1: बाबू डलिया पंखे ले लो, बहुत अच्छे हैं।
3: हाँ ले लो ना बाबू।
4: बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा ला भाई दे दे, एक डलिया दे दो बस।
1: बाबू एक पंखा भी ले लो ना, बहुत मजबूत है, गर्मी के दिन है, घर में काम आएगा बाबू, ले लो ना।
4: अच्छा ला भाई पंखा भी दे दे।
5: आज तो सब सामान बिक गया। तेरी आवाज पर लोग डलियों के साथ साथ पंखा भी खरीद लेते ही हैं।
3: अपनी माई की अच्छी चिड़ैया हूँ ना।
5: मेरी अच्छी चिड़ैया।
1: बाबा के लिए इमरती ले चले।
3: हाँ माँ ले लो, हम लोग भी खा लेंगे ना, कितना दिन तो हो गया मिठाई खाए।
1: और थोड़ी सी चाक भी ले लेती हूँ, स्लेट तो गुरुजी ने दे दी है ना।
3: माँ जो तू पढ़ती है वही मुझको भी पढ़ा दिया करना।
5: अरे वारी, तू तो बड़ी सयानी निकली। हाँ।

0: जी बाबा।
1: आज बड़ी देर हो गई बिटिया।
0: बाबा आज गुरुजी ने कहानी बताई कैसे अंग्रेज आए, हमें आपस में लड़वाया, गरीब बनाया।
1: अरे वाह, इंतजार करते करते चिरैया बेचारी तो सोई भी गई।
0: अरे इसने तो कुछ खाया वाया या भूखी ही सो गई।
2: हम सोए नहीं है माई। हाँ खाना भले ही खा लिया पर बाबा ने नहीं खाया, तुम्हारी राह देख रहे हैं।
0: हे राम, चलो बाबा खाना खा लो।
1: हाँ दोनों का निकाल ले, साथ ही खा लेंगे बेटा।
0: ठीक है बाबा।
1: ला
0: ये लो बाबा।
1: हाँ।
0: ज्ञान की बातें सीखी। गुरुजी ने शहर से टेप मंगाया है।
1: अच्छा।
0: हमें गाना और बड़े बड़े लोगों का भाषण सुनवाएंगे। समय मिलेगा तो तुम भी चलना बाबा। अच्छा लगेगा, यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है वहां ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी।
1: अच्छा भाई, अच्छा चलेंगे, अभी खाना तो खा ले।
0: खा तो रही हूँ बाबा, आप ही ना।

0: तो बड़ी अच्छी जगह है, कभी यहाँ आए ही नहीं।
1: अरे भैया, मैं एक आध बार ही यहाँ आया हूँ। सोचा कि आज गुरुजी के पास जाने से पहले थोड़ा मंदिर भी होते चले।
0: अच्छा किया बाबा।
1: क्या मांगा तूने भगवान से?
0: वो तो सब जानते हैं, भगवान है ना। हाँ, ये जरूर मन चाहता है कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे,
1: वाह,
0: सब सुखी हो, खुश रहे।
1: अरे वाह, गुणवान हो गई है मेरी बिटिया।
0: हाँ बीना बाबा। चलिए गुरुजी के पास चलते हैं।
1: हाँ चलो।
2: अरे आओ आओ जबनिया आओ। अरे वाह,
0: राम राम। प्रणाम गुरुजी।
2: राम राम राम। चुल्लन को भी साथ लाई हो?
0: जी गुरुजी, हमें जो ज्ञान की बातें बताते हैं ना, हाँ, वो बाबा भी सुन लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
1: कोई असुविधा हो तो बता देना गुरुजी। बिल्कुल बेधड़क।
2: नहीं नहीं भाई, बुजुर्ग आदमी हो, दिन भर काम करते हो, मैंने सोचा आराम करते, पढ़ने की धुन तो इसे सवार है ना।
0: क्या बाबा, तुम्हें तकलीफ होगी यहाँ बैठने में?
1: अरे भाई, तकलीफ होगी तकलीफ होगी तो चला जाऊंगा।
2: चलो चलो, ठीक है ठीक है, तुम लोग बैठो। हैं, देखो मैंने एक नाटक मंगाया है जिसे मैं तुम्हें रेडियो से सुनवाऊंगा।
0: रेडियो से?
2: अरे भाई, इसमें रेडियो भी है और टेप भी।
0: अरे वाह।
2: हाँ, टेप चलाऊंगा तो नाटक सुनाई देगा।
1: हाँ, जी जी, सुनाइए जी, सुनाइए गुरुजी।
0: जी गुरुजी।
2: पहले भाई तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं।
0: अच्छा।
2: कि इस नाटक में एक अंग्रेज एक किसान के साथ किस तरह बात करता है, उसके क्या इरादे, क्या तौर तरीके हैं, ध्यान से सुनना।
0: हाँ, जी।
2: सब समझ में आ जाएगा है?
0: जी।
2: और ना समझ में आए तो तुम मुझसे बाद में पूछ ले।
1: जी गुरु जी।
0: जी गुरु जी। हाँ। जी।
3: हमारा कंपनी ने मुगल बादशाह से लगान और माल भाड़े पर चुंगी जो तुम किसान और व्यापारी लोग देते हो लेने का अधिकार खरीद लिया है।
1: ये किसे खरीदे हुजूर?
3: अरे तुमसे लगान और चुंगी लेने का हक हमने ले लिया है, समझा? हम तुमको 1 से 5 साल तक जमींदारी का काम दिया, पर तुमने कुछ नहीं किया।
4: हुजूर, मैं दूसरे किसानों से लगान वसूल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या बताऊँ, इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब है हुजूर।
3: नो नो नो नो नो, वो हम कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती लगान ले लो, नहीं देता तो जमीन छीन लो।
4: आप क्या कह रहे हैं हुजूर, जमीन पर तो हमेशा किसानों का अधिकार रहा है, और तो और नवाब साहब भी किसानों का खेत जब्त नहीं कर सकते।
3: जैसा हमने बोला वैसा करने का, जमीन छीन लो।
4: जी,
3: तुम नहीं कर सकते तो हम किसी और को जमींदार बना देगा।
4: क्या?
3: यस, अब तुम जा सकता है, यू कैन गो।
0: गुरुजी, बड़े जालिम है ये अंग्रेज।
2: हाँ जमनिया, बड़े जालिम थे ये अंग्रेज, उनका चरित्र बताने के लिए ही ये नाटक बनाया गया है।
0: जमींदारों से अंग्रेज ऐसे बात करते थे?
2: अच्छा, अब तुम ये बताओ
0: जी
2: कि जब किसान से अंग्रेज ने लगान न देने पर जमीन जब्त करने को कहा था तो किसान ने क्या उत्तर दिया था?
0: ठीक ही जवाब दिया, ऐसे में तो नवाब की जमीन जब्त नहीं कर सकते।
2: शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक समझा।
1: सही में मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
2: अरे हाँ। चुल्लन, हाँ। तुम्हारा भी जब मन हुआ करे तुम भी आ जाया करो।
1: जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम
0: प्रणाम। हाँ। गुरुजी।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में अब तक लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। गौरतलब है कि श्री

0: गोयल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 अगस्त तक जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित 4थी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इससे 2250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पीडब्ल्यूडी नियुक्तियों के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का फैसला किया है। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड भेल के कालीबाड़ी मार्ग पर होगी। जमुई मैदान में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन होगा। वहीं बड़ा तालाब के बोट क्लब क्षेत्र में सेना की सामरिक क्षमता और शौर्य दिखाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला कार्यक्रम।

महिला सभा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी सखी सोनल चौरे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा लोगों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करने का अवसर है। नेत्रदान एक ऐसा महान संकल्प है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की दुनिया में दोबारा रोशनी लाई जा सकती है। हम में से कई लोग जीवन भर स्वस्थ आंखों से दुनिया की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी जरूरतमंद के जीवन में उजाला ला सकती हैं। कॉर्निया से जुड़ी गंभीर समस्या के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति को नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से फिर से देखने की क्षमता मिल सकती है। सखियों, नेत्रदान के लिए उम्र या चश्मा पहनना हमेशा बाधा नहीं होता। हालांकि नेत्रदान की उपयुक्तता का अंतिम निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को अपनी इच्छा के बारे में पहले से जानकारी दें और अधिकृत नेत्र बैंक के माध्यम से पंजीकरण कराएं। इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर आइए सखियों, मृत्यु के बाद भी की जिंदगी में रोशनी रहे का संकल्प लें। एक छोटा सा निर्णय किसी के लिए दुनिया देखने का अवसर बन सकता है। तो नेत्रदान करें, जागरूकता फैलाएं और किसी की जिंदगी में रोशनी बनें।

सर क्यों हम बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इस योजना में लगभग 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी और घुटना प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त होता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियों, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। जुनून के साथ ही हमारे अंदर उस कार्य के प्रति रुचि भी होना जरूरी है, क्योंकि रुचि के बिना किया गया कार्य उतने अच्छे से नहीं किया जा सकता। रुचिकर कार्य हमेशा ही अच्छा परिणाम देता है। ऐसी ही एक सखी मेरे साथ हैं जिन्हें सिलाई के कार्य में रुचि भी रही है और वे बड़ी लगन से सिलाई करके अपना घर चला रही हैं। इनका नाम है वंदना मालाकर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि सिलाई के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम मेरी उड़ान में।
3: धन्यवाद।
2: तो वंदना जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि सिलाई में रुचि आपको कब आई, कैसे आपने अपना सिलाई का कार्य शुरू किया?
3: मुझे बचपन से ही शौक था सिलाई करने का। मम्मी मेरी सिलाई करती थी तो उनको मैं देखा करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए थोड़ी सी सिलाई। अब तो मैं भी पहले छोटे मोटे कपड़े घर में सिलना सीखे मैंने। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने मुझे नया कपड़ा ला के दिया। उसके बाद मैंने नई ड्रेसेस बनाना शुरू की तो मेरे हाथ से अच्छे कपड़े बनने लग गए। पहले चादर, तकिया की खोले, ये चीजें मैं बनाती थी। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। शादी के बाद फिर मेरी ससुराल में सिलाई मशीन नहीं थी, फिर मैंने जाके सिलाई मशीन खरीदी क्योंकि मुझे शौक था सिलाई करने का। और धीरे धीरे फिर मैंने सिलाई करना शुरू की और मेरा सब्जेक्ट भी होम साइंस था तो उससे भी मुझे कुछ फायदा था कि मैंने उसमें भी बच्चों के कपड़े वगैरह बनाए थे, तो मुझे इंटरेस्ट भी था और बच्चों के कपड़े बनाने का शौक भी था। अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया मुझे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आते थे मेरे पास सिलाई करवाने के लिए।
2: ये तो बहुत ही अच्छी बात है वंदना जी कि आपने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, सिलाई के कार्य में आपकी रुचि रही और आपने इस कार्य में आगे बढ़ी। आप ये बताइए कि आप सिलाई के काम और घर के कामों के बीच कैसे मैनेज कर पाती हैं?
3: मैं पहले अपने घर का काम निपटाने के बाद, सुबह उठ के अपने घर के काम निपटाने के बाद फिर सिलाई का काम करती। कुछ लेडीज है मेरे पास सीखने के लिए भी आती है, मैं उनको सिखाती भी हूँ, मैं अपनी खुद सिलाई भी करती हूँ। और मैं चाह रही हूँ थोड़ी ज्यादा लेडीज से आए तो मुझे सिखाने का भी कुछ पैसा मिले, सिलाई का भी कुछ पैसा मिले तो मेरी आय बढ़े। इस तरह से मैं सोच रही हूँ मेरा काम और आगे बढ़ाने का।
2: तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सिखाने का भी कार्य करती। इसी से क्या होगा कि महिलाएं भी सीखेंगी तो वो भी कार्य में अपना घर भी चला पाएंगी।
3: बिल्कुल सही बात है ये तो, कि अगर कोई भी इंसान थोड़ी सी मेहनत करेगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अपने घर में।
2: वंदना जी, ये बताइए कि आय की बात करें तो क्या आप इतनी कमाई कर पाती हैं कि आपका घर मैनेज हो जाए?
3: हाँ, इतनी कमाई तो नहीं हो पाती है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये चीजें सीजन सीजन पे ज्यादा चलती है। त्योहारों के समय पे थोड़ा सा काम मिलता है तो त्योहारों पे थोड़ी अच्छी इनकम हो जाती है, बाकी समय तो चलता रहता है, पर रुचि है तो अपन करते हैं।
2: तो वंदना जी, आखिर में आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
3: मैं अपनी सखियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी को सिलाई में रुचि है तो वो अपनी सिलाई में और ज्यादा मेहनत करे और अपनी आय को बढ़ाए, उससे उनका घर भी अच्छा चलेगा और घर में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी।
2: बिल्कुल सही बात है कि छोटी छोटी चीजों से भी हम अपना घर चला सकती हैं सखियों। तो देख सकती हैं कि वंदना जी ने कैसे अपना सिलाई का कार्य शुरू किया और अपनी लगन और मेहनत से अपने स्वयं के पैरों पर खड़ी हुई। यदि आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो जरूर शुरुआत करें और सफलता हासिल करें। तो वंदना जी, आप हमसे जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियों, अभी हम सुन रहे थे सिलाई क्लास संचालिका वंदना मालागार जी को, और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियो, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रूपलावण्य की। तो सखियो, मानसून में हवा में नमी बढ़ने के कारण त्वचा ज़्यादा तेलीय, चिपचिपी और बेजान नज़र आ सकती है। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि मानसून में चिपचिपी त्वचा से कैसे राहत पाएं और कैसे चेहरे का ग्लो है वो बरकरार रखें। तो सबसे पहले तो सखियो, चेहरा साफ रखें। दिन में 2 बार माइल्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं। इससे अतिरिक्त ऑयल, पसीना और धूल साफ होती है। हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। तेली त्वचा होने पर भी मॉइस्चराइजर जरूरी है। ऑयल फ्री या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर विकल्प हो सकता है। बादल होने के बावजूद भी सखियो, सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बाहर निकलने से पहले SPF 30+ सनस्क्रीन जरूर लगाएं। चेहरा बार बार ना छुएं, हाथों की गंदगी और बैक्टीरिया पिंपल्स और त्वचा संबंधित समस्याएं बढ़ा सकते हैं। दौरान भारी मेकअप से बचें, हल्के नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट और हाइड्रेशन पर ध्यान दें। इसके लिए आप पर्याप्त पानी पिएं।

फल सब्जियों का आहार अपने डाइट में शामिल करें। तो बस सखियों, इन छोटे से टिप्स को आजमाइए और मानसून के मौसम में भी अपनी चमक बरकरार रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं फूड जोन की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मूंग दाल चीला की रेसिपी, जो कि आपको मानसून के मौसम में बहुत पसंद आने वाली है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और ये एक हल्का और सुपाच्य नाश्ता होता है। ये मानसून में सेहतमंद है। इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या लेना है वो आप नोट कर लीजिए। भीगी मूंग दाल, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, नमक, जीरा और थोड़ा सा तेल। अब इसकी विधि नोट कर लें। भीगी दाल पीसकर घोल बनाएं, इसमें सब्जियां और मसाले मिलाएं, तवे पर हल्का तेल लगाकर चीले की तरह फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें और हरी चटनी के साथ इसे परोसें। तो देखिए कितना स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता तैयार है। और अब सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: rema re sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa और अब काम की कुछ बातों में हम बात कर लेते हैं कि बारिश में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सखियों, ये मौसम जितना सुहावना है उतनी कई परेशानियां भी साथ में होती हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है कि बारिश में दूषित पानी से बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए पानी को हमेशा उबाल कर पिए। दूसरी बात, खान पान का ध्यान रखें, ताजा और घर का भोजन ही करें, बाहर के भोजन को अवॉइड करें इस दौरान। तीसरी बात, इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, इन सब खतरा बढ़ जाता है, तो घर के आसपास पानी न जमे।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनते हैं बद्रीलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत।

बद्रीलाल मालवीय के गाए मालवीय लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नंदिनी शरण के गाए भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप नंदिनी शरण के गाए भजन सुन रहे थे। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का। श्रोताओ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। आवश्यक सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर डायरेक्ट टू होम डीटीएच।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सुनिए अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल कहीं भी कभी भी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अंतराल का समय पूरा होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है सोल्जर फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज़ है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सबसे सफल स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में यूपीआई के माध्यम से केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी अवधि में लेन देन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में युवाओं, किसानों और कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोगों से संवाद किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं द्वारा किए जा रहे नए कृषि प्रयोगों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित किया।
1: 8 से 9 महीने लगते हैं और
2: 8 से 9 महीने मोती बन जाता है।
1: आजकल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी पर्टिकुलर
2: टाइम में कितनी जगह लगती है
1: सर? लोग अपनी 200 लीटर और 1000 की जो टंकी होती है वो 3 टंकियों में भी मोती की खेती कर ले रहे हैं सर। लोग छत पे कर ले रहे हैं।
2: छत पे हो जाती तो मोती सस्ता मिलता होगा
1: सर? वो दो तरीके के होते हैं, जो समुद्र से आ रहे हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट ये कैरेट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कैरेट का है तो ये 200 रुपए के हिसाब से।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। किसानों को अब व्हाट्सएप के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। बैठक में कुल 10,630 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिवनी बालाघाट स्टेट हाईवे को 4 लेन करने का फैसला लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि खेलो इंडिया योजना से खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के 52 खेलो इंडिया सेंटर मजबूत किए जाएंगे और स्कूल स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3: खेल का बजट लगभग 8 गुना बड़ा है। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए कोचिंग की उपलब्धता हो, खेलों के में खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए नीचे स्तर से टैलेंट सर्च करने की बात, स्कूल स्तर पर टैलेंट सर्च किया जाए जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि खेल मैदान का और उन्नयन हो सके, खेलों का और खिलाड़ियों का उन्नयन हो सके।
0: सीहोर में आज 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई। जीवन नदी के तट से शुरू हुई इस यात्रा में प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश के बावजूद कांवड़ी हर हर महादेव के जयकारों के साथ कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी कांवड़ में जल भरकर यात्रा में हिस्सा लिया। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं 20 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में आत्मा परियोजना के तहत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नीमच जिला पंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय जिला स्तरीय राखी मेले का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम में समय सीमा पत्रों की बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। जबलपुर में कल सड़क हादसे में 12 साल के बालक की गोहलपुर थाना क्षेत्र में मृत्यु हो गई। झाबुआ में दुर्घटना मृत्यु के 17 प्रकरणों में 68,00,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 3,76,00,000 रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता में 1,00,000 रुपए की सहायता दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर समाचार के लिए कृपया कुछ वक्त का इंतजार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

0: श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
2: स्पिरिट ऑफ इंडियाज जर्नी।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global Air cargo facilities across the country.
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीज़ा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीज़ा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बसेरा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है सिक्सटर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। साथ ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इसे हमने लिया है पूर्णिमा फिल्म से। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत को पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजूरिया। साथ ही साथ ये पत्र है बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर का। और छत्तीसगढ़ दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरणोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और संतोष पगारिया।

अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही श्रीमती सरिता गवाड़कर प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन गवाड़कर टुक टुक और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश घंटाघर चौक खंडवा से। ये पत्र हमें मिला है संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा हृदया सालिया शोएब खान असमा सायमा खान मुस्तावा खान अफिया खान राउफ भाई शहीद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं विश्वास फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन बनाई है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का गीत। हमारे इन सभी श्रोताओं के आग्रह पर दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण गरोवर और रमेश मिगलानी की। और बक्सर बिहार से ये खत हमें मिला है शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी का। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। साथ ही साथ सारिमपुर बक्सर के ये हमारे श्रोता है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। और ये एक और खत इसी फिल्म के गीत की फरमाइश है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरी का। तो सुनते हैं मिलन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इसे अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

आई मिलन की रात। अब सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने, और इस गीत को सुनना चाहा है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी, छाबड़ा राजस्थान से। इस गीत की हमें फरमाइश मिली है और ये हमारे श्रोता है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, चालीसगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से। पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, आरती नीरज ठाकुर, नव्या ठाकुर, तुषार गोविंद ठाकुर, दियान नीरज ठाकुर, मनकणताई ठाकुर, मनीषा सूर्यवंशी और आरोही सूर्यवंशी। और ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा का। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आपने आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब सुनिए इस घटने की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सबसे सफल स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में युवाओं, किसानों और कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोगों से संवाद किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी कंपनियों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि खेलो इंडिया योजना से खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा 5:33 पर और रात 8:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 6:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। शाम 6 बजे आपको सुनवाया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। सात बजकर 30 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में।

उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा रात 10:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित आसकरण शर्मा का राग यमन में ख्याल गायन।

ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:25 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दरमियान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे बद्रीलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत।

अभी आप बद्रीलाल मालवी के गाए मालवी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे नंदिनी शरण के गाए भजन।

नंदिनी श्रवण के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। डीडीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

डीटीएच ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है रॉकी।

गीत अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को लिखा है अनजान ने।

0: राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अब सुनते हैं बातों बातों में फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर की आवाज़ में सौतन फिल्म का ये गीत है। सावन कुमार ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत उषा खन्ना का है।

0: सौतन फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब पेश है लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से ही परिभाषित नहीं होगी बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स FIP के पुस्तक प्रकाशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तकों और संदर्भ प्रकाशनों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2026 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सबसे सफल स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी कंपनियों के कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग ना हो। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोपहर के 4 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में आपको हम सुनवा रहे हैं आदिवासी परंपरा के प्रतीक योजना। ये वार्ताकार है डॉक्टर वसंत निरगुणे और तदुपरांत आप सुनेंगे डॉक्टर सुभाष जाटव से काव्य पाठ।
2: प्रतीक के बीच आदिवासी जनजाति पृथ्वी की वह मानव श्रृंखला है जो अन्य जीव जंतुओं से सर्वथा अलग, दो पैरों पर संतुलन बनाकर चलने, दोनों हाथों से बड़े बड़े कार्य करने और मन मस्तिष्क से रचनात्मक पहल करने की क्षमता लेकर पैदा हुआ। उसके सामने एक पूर्ण विकसित

प्रकृति का विशाल फलक पहले से मौजूद था। सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, फल फूल, हवा, पानी, धरती, आकाश, पशु पक्षी, सब कुछ उसके आसपास ही उसके अस्तित्व का अनिवार्य अंग बन गए थे। लेकिन इन सब के होते हुए भी वह जो सब चाहता था वह गायब था। जीवन था लेकिन सौंदर्य नहीं था। जीवन का ऐसा कोई स्थायी ढांचा या मॉडल उसके सामने नहीं था जो उसे जीने का सरंजाम दे सके, अपने हाथों से कुछ गढ़ सके, जहां वह अपने मनमाफिक चीज़ों को ले सके, उसके आस्वाद की पूर्ति कर सके। वह जो भी करता था वह उसका कोरा अनुभव प्रथम सृजन था। सबसे बड़ा पहला अनुभव प्रकृति के रीत का था। वह सूरज के साथ जागता था और रात के आगोश में सो जाता था। शीत में सिकुड़ता, गर्मी में फैलता, वर्षा में भीगता। ऐसे में उसकी आंतरिक अनुभूति को व्यक्त करने के लिए कोई साधन नहीं था। उसके पास वाक तो था, वह आवाज़ कर सकता था, चिल्ला सकता था, पशु पक्षियों की तरह की ध्वनियाँ निकाल सकता था, लेकिन संकेत कर सकता था, पर अभी भी आदि मानव अधूरापन महसूस करता था। संकेत पूरी बोली या भाषा नहीं बन पाई तो उसने गुफाओं में चित्र बनाकर अपनी बात कहने का साहस किया। इसके बाद उसने जुबान से बोली का आविष्कार किया। बोली शब्द की जननी है, संज्ञान शब्द का पुत्र है, भाव और विचार संज्ञान के खेल हैं। इस प्रकार संज्ञान धीरे धीरे अक्षर के रूप में प्रौढ़ हुआ और अक्षर से लिपि का प्रादुर्भाव हुआ। बोली ऐसे भाषा बनती चली गई। सबसे पहले बोली या भाषा ही प्रतीक का आधार बनी। सबसे अधिक बोली भाषा में ही प्रतीक रचे गए। बोली का रूप वाचिक है और भाषा का आश्रय लिखित है। आदिकाल से आदिवासी अपनी बात प्रतीक में ही कहता आया है। उसके सामने सबसे बड़ी जीने वह उसका पहला ही अनुभव था। उसने उसकी अनुभूति में जो उसे पहचान या नाम दिया वह उस वस्तु का प्रतीक बन गया। आखिर प्रतीक क्या है? आदिकाल से मनुष्य इन प्रतीकों का उपयोग करता आया है। जीवन के हर पहलू में प्रतीक की जरूरत क्यों है? इस बात का जवाब एक ही है कि प्रतीक के बिना मनुष्य अपने मन की बात पूरे प्रभाव के साथ नहीं कह पाता था, रच पाता था या रह पाता था। आदिम समुदाय ने अपनी संवेदनशील बात कहने के लिए जो प्रतीक योजना की वह परंपरा ही बन गई। जो जीवन शैली में व्यवहार के रूप में, वाचिक परंपरा में शब्द के रूप में, रूपंकर कलाओं में रंग रेखा, शिल्प पर आकृति के रूप में, प्रदर्शनकारी कला में स्वर, लय, ताल, नृत्य, अभिनय, मुद्रा के रूप में और अनुष्ठान पाठ पूजा में आस्था विश्वास के रूप में साकार होते गए। भाषा स्वयं एक प्रतीक परंपरा का नाम है। सारा संसार प्रतीक की सृष्टि है। प्रतीक के गूढ़ रहस्यों को समझने में मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति से जो बिंब, अभिप्राय, संकेत, चिन्ह चुने वही प्रतीक कहलाए। ये प्रतीक कहीं न कहीं मनुष्य के विकास के साथी बने। प्रतीक मात्र शब्द और अर्थ नहीं होते। उनका प्रयोग किसी सूक्ष्म केंद्र के आशय को पकड़ने के लिए किया जाता है। प्रतीक के माध्यम से कही गई बात कहीं सीधे समझ में आ सकती है और कहीं दुरूहता भी ग्रहण कर सकती है। परंतु जब प्रतीक खोला जाता है तब तो प्रतीकार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। प्रतीक हमेशा जहाँ होते हैं एक अनिर्वचनीय सौंदर्य की सृष्टि भी करते हैं। यही कारण है कि जीवन, साहित्य, कला, संस्कृति में प्रतीक का स्थान केंद्रीय है। प्रतीक उत्प्रेक्षा नहीं होता, न उपमा। प्रतीक में समानता का भाव होता है। प्रतीक में किसी चीज को आरोपित भी नहीं किया जाता। इस प्रकार प्रतीक रूपक भी नहीं होता। किसी देवता मूर्ति में देवता के सात्विक देवत्व भाव को दिखाने के लिए किसी मोटिफ

अभिप्राय और प्रतीक या सिंबल के माध्यम से दिखाए जाते हैं। मूर्ति, मठ, मंदिर, मड़ई, ध्वज, रंग, ओम, स्वस्तिक, क्रॉस आदि प्रतीक केवल चिन्ह मात्र ही नहीं हैं, इनमें पूरी संस्कृति की पहचान छिपी होती है, जिनमें जीवन अध्यात्म की विशद व्याख्याएं तक होती है। प्रतीक मिथकों का द्वार होता है। मिथकों को समझने के लिए जिज्ञासु को पहले इसी द्वार से गुजरना अनिवार्य है। आदि मानव ने अपने प्रारंभिक विकास में ही प्रतीकों की खोज शुरू कर दी थी। अदृश्य संसार की अबुझ यातुमूलक अवधारणाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रारंभिक मानव ने अनेक आदिम प्रतीकों की कल्पना की थी। आज भी आदिम समूहों में उनके ऐसे तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और देवी देवताओं के बीच प्रतीक मिलते हैं। आज भी प्रतीक सृजन की परंपरा सृष्टि में रुकी नहीं है, निरंतर है। प्रतीक सृजन के आदिवासी जीवन में जो अवसर आए उन पर दृष्टि डालने पर पता लगता है कि वे सब उनके जीवन विकास काल में ही निर्मित होते चले गए। जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ा, प्रतीक समय के साथ अपने रूपाकारों को भी विकसित करता चला गया। पुराने प्रतीकों ने उसके जीवन को गढ़ा और नए समसामयिक प्रतीकों ने उसे सजाने का काम किया। वे मूल तत्व हैं प्रकृति। प्रकृति मूर्त और अमूर्त दोनों है। वह मनुष्य के भीतर और बाहर फैली है। प्रकृति सर्वत्र सर्वशक्तिमान है, यह मानकर ही आदिवासी प्रकृति पूजक बने हैं। उसे ही वे ईश्वर का दर्जा देते हैं। प्रकृति ईश्वर का प्रतीक है। प्रकृति की आधार भूमि को आदिवासी माता कहते हैं और अपने आप को पुत्र, उसी के अन्न जल से उनका जीवन है। धरती, प्रकृति, संस्कृति से पवित्र कोई नहीं। पेड़ पूजक आदिवासी अपने भगवान का वास साजा वृक्ष में मानते हैं। साजा बड़ा देव का प्रतीक है। कर्म वृक्ष कर्म देव का प्रतीक है। नृत्य, गीत, संगीत से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रतीक मृतकों का अर्थ गौरव बढ़ाते हैं। बैगा आदिवासी साल में एक बार भूमि को प्रतीक मानकर समूह पूजा करते हैं, जिसमें पूरा गांव सम्मिलित होता है। आदिवासी टोटम या गोत्र से बंधा होता है। गोत्र रक्त व्यवस्था का प्रतीक है। एक ही गोत्र के लोग एक वंशी भाई बंधु माने जाते हैं। आदिवासी समाज में समगोत्री विवाह वर्जित होते हैं। प्रत्येक गोत्र का एक गणचिन्ह होता है जो गोत्र की पहचान निर्धारित करता है। गणचिन्ह का आदिवासी अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये गणचिन्ह पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति के विभिन्न उपकरण, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्र आदि होते हैं। उपकार के एवज में आदिवासी इन उपकारकर्ताओं को प्रतीक में पूजित और संरक्षक मानते हैं। ऐसे मीन, कछुआ, नाग, बाघ, पक्षी आदि जानवर जिन्होंने कभी संकट के समय में आदिवासी परिवार की रक्षा की थी, उन्हीं को प्रतीक गोत्र गणचिन्ह बनाकर पूजने की प्रथा का सूत्रपात किया। ये आदिवासी जिन्हें अपना गोत्र चिन्ह बना लेते हैं, उसकी पूरा गोत्र परिवार पूजा करता है, सम्मान करता है। पेड़ हो तो उसे काटते नहीं हैं, न उसे जलाते हैं। जानवर हो तो उसका शिकार नहीं करते, उसका मांस भी नहीं खाते। उसके नाम को गोत्र के रूप में धारण करते हैं। गोत्र रक्तीय एकता और जैविक संतुलन का प्रतीक प्रमाण है। इसलिए समगोत्री विवाह का आदिवासी विरोध और प्रतिबंध करते आए हैं। उनमें बहु कुलवधु होती है और प्रतीक के मृत्यु होने पर विधवा को देवर के नाम की पूरी चूड़ी पहननी पड़ती है ताकि वह कुलवधु बनी रहे। अन्य समाजों में पुत्रवधु होती है जो विधवा होने पर कोई दूसरे कुल का पति चुन सकती है। मतलब आदिवासी इस जैविक विज्ञान प्रतीक के सच को आदिकाल से जान गए थे। वैज्ञानिक सच यह है कि पुरुष में ही वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पुरुष बदलते ही इससे अनुवांशिकता बदल जाती है। इसी कारण विवाह होते ही स्त्री का गोत्र बदलने का रिवाज एक दृढ़ प्रतीक के रूप अपनाया गया है।
गोत्र से ही परिवार रिश्ते नाते तय होते हैं। गोत्र जनजाति समाज का बहुमूल्य प्रतीक है। सभ्य समाज में गोत्री व्यवस्था आदिवासी संस्कृति से आई है। आदिवासियों में

0: इंद्र ही है। अब इनका टूटना खेत का विषय है। आदिवासियों के घर, बस्ती, देव चौपाल, देव वृक्ष, देव वन संस्कृति के आख्यानिक पूजित प्रतीक हैं। वाचिक परंपरा आदिवासियों की सबसे प्रमुख धरोहर है, जिसमें भाषा के माध्यम से सैकड़ों हजारों प्रतीक बुने गए हैं। भाषा स्वयं एक प्रतीक है। अर्थपूर्ति में जिन चिन्हों संकेतों का अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रतीक सबसे बड़ा सहायक बनकर खड़ा होता है, जिससे न केवल भाषा का लालित्य बढ़ता है, बल्कि अर्थ गौरव की भी श्रीवृद्धि होती है। आदिवासियों की कला परंपरा में प्रतीक योजना सबसे अधिक पाई जाती है। इसका प्रयोग आद्य मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रण में सबसे पहले किया, जहाँ एक रेखा, एक रंग का छीटा भी कई कई अर्थ दे सकता है। प्रारंभिक मनुष्य की बनाई पत्थर की कुलाड़ी पूरे पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करती है। समूचा लोह युग लोहे के विकसित कला का प्रतीक है। कृषि युग तो मानव के विकास का चरम प्रतीक ही है, जिसके आधार पर पूरी कृषि संस्कृति का विकास हुआ। देखा जाए तो कृषि संस्कृति ने विश्व को सबसे अधिक प्रतीक दिए हैं। कला परंपरा आदिवासी प्रतीकों की अभिव्यक्ति का सबसे रसमय आस्वाद है। गीत में शब्द और स्वर, संगीत में वाद्य, नृत्य में मुद्रा, नाट्य में अभिनय, हजारों प्रतीक सजीव करते हैं। पर्व त्यौहार, देवी देवता, पूजा अनुष्ठान, आस्था विश्वास, शकुन अपशकुन, आचार विचार, संस्कार, धर्म कर्म, ध्वज ध्वजा, न जाने कितने रूपों में प्रतीक को रूपायित करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, जो सब आदिवासी जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। गोदना शरीर का गहना प्रतीक है। गोदना जहाँ शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, वहीं उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को भी बताता है। गोदने आदिवासियों की जाति पहचान कायम करते हैं। प्रत्येक जनजाति के अलग अलग गोदने हैं, जिनके अलग अलग आशय होते हैं। इस कारण दूर से देखकर ही प्रत्येक आदिवासी को पहचाना जा सकता है। मरने के बाद यही गोदने प्रतीक रूप में मनुष्य के साथ जाते हैं, जो उसके मनुष्य होने के प्रमाण हैं। वेशभूषा और आभूषण आदिवासी पहचान के खास प्रतीक है। पहनावा आभूषण देखकर कोई भी बाहरी व्यक्ति आदिवासियों को पहचान सकता है। वेशभूषा और गहने स्थानिक भूमि, भूगोल, परिवेश और पर्यावरण पर आधारित होते हैं। पहाड़ पर रहने वाले आदिवासियों का पहनावा कुछ अलग होता है, और समतल पर निवास करने वाले आदिवासियों की वेशभूषा और गहने सर्वथा भिन्न होते हैं, इसलिए उनके अभिप्राय और प्रतीक भी भिन्न भिन्न होते हैं। जन्म मृत्यु के बीच जो अंतराल है, उसे जीवन कहते हैं, और वो पूरा जीवन कहीं न कहीं प्रतीक के बीच खड़ा होता है। हर दिन आदिवासी अपनी ज्ञान परंपरा में नए से नए प्रतीक जोड़ता चलता है। तेज गति से बदलते परिवेश में भी मनुष्य प्रतीक योजना को भूलता नहीं है। चारों ओर प्रतीकों का साम्राज्य है। सूर्योदय जीवों के जागरण का प्रतीक है, और सूर्यास्त कहीं जीवन के अंत का प्रतीक है। जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। सदियां सदियां बीत गई प्रतीक के बीच में जनजातियों की, फिर भी प्रतीक की यात्रा का अंत नहीं है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष जाटव आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। बन

लंबे समय से है अनुष्ठानों में रत लंबे समय से। पीर का कोई भी प्रस्तावक नहीं है।

तेरा मकसद तुझे पाने की लगन मैं हूँ, तुझे पाने की लगन मैं हूँ, तेरी तड़पन

क्या गलत है क्या सही यह बात छोड़ो, क्या गलत है क्या सही यह बात छोड़ो, इन प्रपंचों से निरामन भर रखा है, तुमको अपना पात्र सहयोगी मिला हो।

0: शब्द सागर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने डॉक्टर वसंत निरगुणे की वार्ता आदिवासी परंपरा में प्रतीक योजना और डॉक्टर सुभाष जाटव से काव्य पाठ सुना। अब ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की सातवीं कड़ी।

वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनियों की कहनी सुन।

0: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया और रतन पट्टे की जमीन पाकर खुश थे और अपनी मेहनत से उसे खेती लायक बनाया। रतन के भाई करण ने रतन को दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे छल पूर्वक दीवान और करण ने मिलकर 25,000 कर दिया। रतन को ये बात पता चली तो वो स्तब्ध हो गया। इसी बीच जमुनिया गर्भवती हुई, उसने पुत्री को जन्म दिया। उसके जन्म से पहले ही रतन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद करण ने जमुनिया को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया और उसका बेटा हथिया लिया। पास के एक गांव के छुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। गांव में अस्पताल, सड़क, स्कूल, पानी इत्यादि की कमी जमुनिया को खलने लगी और इसके लिए वो अशिक्षा को जिम्मेदार मानते हुए उसने पढ़ने का निश्चय किया। वहां के गुरुजी से मिली। इसके बाद आगे हमारी आज की गाथा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा अतीत क्या था, और अगर मामला देश की सामाजिक और आर्थिक परिवेश का हो या राजनीतिक वातावरण का, तो ये बात यकीनन सच लगती है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो अर्जुन और दुर्योधन का महाभारत हो, चाहे वो अलेक्जेंडर का यूनान, चाहे वो जूलियस सीजर का रोम, या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के उत्थान या पतन का हो, या आज के भारत में स्थित हमारे मास्टर जी यानी कि जमुनिया के गुरुजी भी कुछ ऐसा ही मानते थे। गुरुजी को विश्वास था कि अगर जमुनिया के अंदर की चिंगारी को सही दिशा मिलती है तो ये जरूरी है कि पहले जमुनिया गांव की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की जड़ को और उसके तमाम कारणों को अच्छी तरह समझ ले। फिर क्या था, मचे हुए कुम्हार की तरह जमुनिया की शक्ल बदलने लगी।
1: गुरुजी।
2: हाँ।
1: प्रणाम गुरुजी, मैं आ गई।
2: अच्छा, प्रणाम प्रणाम।
1: ये रहा कागज। हाँ। जे कलम और जे पेंसिल, आज शुरू करते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ना लिखना जल्दी से सीख जाऊं।
2: अरे भाई, आशीर्वाद तो हमारा सदैव तुम्हारे लिए रहेगा जमनिया। हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई की शुरुआत स्लेट व चौक से ही करना होगी है। देखो, शुरू शुरू में कई बार अभ्यास करना पड़ता है। हाँ। इसके लिए स्लेट ही अच्छी रहती है और चौक ही अच्छी रहती है। अरे भाई, क्योंकि कागज जरा खर्चीला है ना, इसलिए।
1: तो फिर आज से पढ़ाई शुरू नहीं होगी गुरुजी?
2: हाँ, अरे भाई क्यों नहीं होगी, आज ही से नहीं बल्कि अभी से शुरू होगी। देखो, अपना कागज कलम तुम अपने पास रखो।
1: जी।
2: ये देखो, ये मेरे पास चौक और ये स्लेट है।
1: जी।
2: हाँ, तो इधर चार्ट पर देखो।
1: जी।
2: ये रहा आ। अब तुम्हें इसकी नकल करके स्लेट पर लिखना होगा। है ये लो।
1: जी। ये रहा
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो साथ में बोलती भी रहो तो मैं देखो आ।
1: जी।
2: थोड़ी गड़बड़ है, पहले इस तरह देखो, आड़ी लाइन।
1: जी।
2: फिर खड़ी लाइन।
1: जी।
2: तब बनेगा आ।
1: हाँ जी, ये रहा अ।
2: हाँ, ये कुछ ठीक है। अब इसके आगे खड़ी लाइन, खड़ी लाइन और खींचोगी तो बनेगा आ।
1: जी ठीक है, ये रहा अ और ये आ।
2: अरे अरे भाई, तुम बहुत जल्दी कर रही हो। देखो देखो देखो, आराम से हैं, अच्छे से साफ साफ लिखने की कोशिश करो।
1: जी अच्छा गुरुजी। ये रहा अ और इसके आगे ये ख। खड़ी लकीर, ये रहा आ।
2: अरे भाई, इतनी बड़ी लकीर नहीं बनाते, उसे भी आ के आकार की ही बनाना पड़ती है, हैं?
1: जी
2: हाँ,
1: इस बार कुछ बात बनी क्या गुरुजी?
2: हाँ, कुछ बात बनी तो है।

0: आ गई?
1: जी।
0: अरे कैसी रही आज की पढ़ाई जमुनिया?
1: लिखना फिर उसको आ बनाना सीखा है।
0: हाँ?
1: अच्छे से बन नहीं रहा था बाबा, पर छोड़ूंगी नहीं, आज रात को घर पर ही अभ्यास करूंगी।
0: हाँ भाई, अरे कर भाई कर, इस उम्र में तूने पढ़ाई की ठानी है तो कर ही डाल।
1: बाबा
0: हाँ?
1: हम चिरैया को भी पढ़ाएंगे।
2: तब तो बड़ा अच्छा लगेगा ना माँ, हम दोनों पढ़ेंगे।
0: तुम्हारी इच्छा पूरी हो बिटिया, पूरी हो।
1: बस यही आशीष दो बाबा।
0: अरे हाँ हाँ, आशीष है आशीष है।
3: गुरुजी, गुरुजी।
4: हाँ, अरे आओ आओ जमनिया, आओ।
1: प्रणाम गुरुजी।
4: प्रणाम प्रणाम।
1: मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई गुरुजी।
4: अरे कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और काम नहीं है बेटा, जैसे ही तुम्हें समय मिले आ जाया करो
1: जी।
4: बार बार लिखने से जल्दी सीख जाओगे।
1: जी अच्छा गुरुजी। गुरुजी ये देखिए, मैं कुछ लिख कर लाई हूँ।
4: अरे अरे अरे वाह वाह वाह, अरे भाई तुमने तो बड़ा अच्छा लिखा है, लगता है घर पर भी तुमने खूब लिखा है।
1: जी गुरुजी, मुझे पढ़ना लिखना सीखना ही है।
4: अरे शाबाश बेटा शाबाश। भाई देखो, आज तुम्हें हम अंक लिखना सिखाएंगे हैं।
1: जी।
4: एक, ये देखो एक है
1: जी,
4: और ये दो, और ये तीन है।
1: ये तो लिखना थोड़ा आसान लग रहा है ना गुरुजी?
4: हाँ बेटा, लेकिन इन अंकों की दुनिया बड़ी चतुर होती है। खैर वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी तो तुम इसको जरा बार बार लिखो।
1: जी गुरुजी।

0: शाबाश।
1: अच्छा लिखा ना गुरुजी।
0: बहुत अच्छा, बहुत।
2: पंखे ले लो बाबू।
1: बाबू डलिया पंखे ले लो, बहुत अच्छे हैं।
3: हाँ ले लो ना बाबू।
4: बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा ला भाई दे दे, एक डलिया दे दो बस।
1: बाबू एक पंखा भी ले लो ना, बहुत मजबूत है, गर्मी के दिन है, घर में काम आएगा बाबू, ले लो ना।
4: अच्छा ला भाई पंखा भी दे दे।
5: आज तो सब सामान बिक गया। तेरी आवाज पर लोग डलियों के साथ साथ पंखा भी खरीद लेते ही हैं।
3: अपनी माय की अच्छी चिड़ैया हूँ ना।
5: मेरी अच्छी चिड़ैया।
1: बाबा के लिए इमरती ले चले।
3: हाँ माँ ले लो, हम लोग भी खा लेंगे ना, कितना दिन तो हो गया मिठाई खाए।
1: और थोड़ी सी चाक भी ले लेती हूँ, स्लेट तो गुरुजी ने दे दी है ना।
3: माँ जो तू पढ़ती है वही मुझको भी पढ़ा दिया करना।
5: अरे वारी, तू तो बड़ी सयानी निकली। हाँ।

0: Acemin ya. अक्षर अंक मात्राएं ये सब तो तुमने बड़ी जल्दी सीख ली। अब हम तुम्हें शब्द ज्ञान पढ़ाएंगे।
1: जी गुरुजी।
0: हाँ, और देखो साथ में तुम्हें कुछ कहानियां भी सुनाते चलेंगे। तुम्हें उन्हें सुनकर याद करना होगा और उसी में से हम तुमसे कुछ सवाल भी पूछेंगे।
1: जी।
0: और जिसका उत्तर तुम्हें अपनी समझ से देना होगा।
1: मास्टर जी, कोशिश करूंगी।
0: अरे वाह जमुनिया, तू तो मुझे मास्टर बोलने लगी।
1: भूल हो गई गुरुजी, बच्चे आपको गुरुजी और मास्टर जी ये दोनों ही बोलते हैं ना।
0: अरे, अरे, अरे
1: तो मैंने भी।
0: चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बेटा अब कहानी सुनो।
1: जी।
0: हमारे देश में हर देश के लोग आते रहे, व्यापार करते फिर चले जाते। पहले देशों को जाने के लिए समंदर ही का रास्ता था। और हमारे देश के तीन तरफ समंदर है।
1: बाप रे।
0: समंदर समझती हो ना? अरे वो खारे पानी वाला, खारे पानी का होता है जो।
1: जी गुरुजी, जिससे नमक बनता है।
0: हाँ हाँ,
1: किसी ने कभी नमक खरीदते समय बताया था।
0: अच्छा
1: जी, वो बहुत बड़ी सी झील है ना, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, जितना हम सोच भी नहीं सकते।
0: भाई धीरे धीरे सब समझ जाओगी। तो बेटा व्यापारी आते, व्यापार करते फिर चले जाते। थोड़े से लोग यहां भी बस गए, पर अंग्रेज ऐसे आए कि जोंक की तरह चिपक गए। आए तो यहां व्यापार करने थे, पर हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर धीरे धीरे यहां के राजा बन बैठे। उन्होंने देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा खोखला कर दिया।
1: गुरुजी, सामाजिक तो समझ में थोड़ा आया।
0: हाँ।
1: जैसे कि हम जिनके बीच रहते हैं, रीति रिवाज वगैरह।
0: हाँ।
1: पर ये आर्थिक क्या होता है गुरुजी?
0: अरे भाई आर्थिक यानी वो रुपये पैसे की गरीबी। तो वो अपना माल यहाँ बेहद महंगा बेचते और हमारा माल सस्ते में ले जाते। उन्होंने हमें गरीब बना दिया, हमारे गांव बर्बाद हो गए और हम अपने ही देश में गुलाम हो गए।
1: वो बहुत चतुर लोग रहे होंगे।
0: हाँ बेटा।
1: और बेईमान भी।
0: हाँ हाँ, बहुत चतुर, बहुत बेईमान। तो बेटा
1: जी,
0: तुम सब समझ रही हो
1: जी।
0: तो अब बताओ कि अंग्रेज हम पर राज करने में क्यों सफल हुए?
1: गलत हो तो समझाइएगा, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं ना गुरुजी। मैं समझती हूँ हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे होंगे, है ना?
0: बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा तो बेटा आप बताओ हमारी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई?
1: वो अपने देश का माल यहाँ लाकर सस्ता, अरे माफ करना गुरुजी, महंगा बेचते थे और हमारा माल सस्ते में ले जाते थे, है ना?
0: वाह वाह वाह, अरे भाई बिल्कुल ठीक। तो देखो आज बस इतना ही है
1: जी।
0: हाँ, मैंने शहर से रेडियो टेप रिकॉर्डर बुलवाया है।
1: अरे वाह।
0: उसके आने के बाद तुम्हें कुछ खास रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगा।
1: गुरुजी गाना सुनवाएंगे?
0: हाँ भाई गाना भी सुनाएंगे, पर तुम्हें जरा ध्यान से सुनना होगा
1: जी,
0: क्योंकि उसमें हमारे देश के महापुरुषों के भाषण होंगे। उसे तुम्हें और भी अधिक समझना पड़ेगा।
1: बहुत अच्छा लगेगा, जमुनिया को भी समझ में कुछ आएगा। अब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है गुरुजी।
0: ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा तो अब तुम घर जाओ हैं?
1: ये तो आज का वाक्या आज हो गया।
0: हाँ बेटा बहुत तेज दिमाग पाया है तूने, बस थोड़ी सी मेहनत से सब हासिल हो जाए।
1: बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब हो जाएगा।
0: अच्छा।

0: जी बाबा।
1: आज बड़ी देर हो गई बिटिया।
0: बाबा आज गुरुजी ने कहानी बताई कैसे अंग्रेज आए, हमें आपस में लड़वाया, गरीब बनाया।
1: अरे वाह, इंतजार करते करते चिड़ैया बेचारी तो सोई भी गई।
0: अरे इसने तो कुछ खाया वाया या भूखी ही सो गई।
2: हम सोए नहीं है माई। हाँ खाना भले ही खा लिया पर बाबा ने नहीं खाया, तुम्हारी राह देख रहे हैं।
0: हे राम, चलो बाबा खाना खा लो।
1: हाँ दोनों का निकाल ले, साथ ही खा लेंगे बेटा।
0: ठीक है बाबा।
1: ला
0: ये लो बाबा।
1: हाँ।
0: ज्ञान की बातें सीखी। गुरुजी ने शहर से टेप मंगाया है।
1: अच्छा।
0: हमें गाना और बड़े बड़े लोगों का भाषण सुनवाएंगे। समय मिलेगा तो तुम भी चलना बाबा। अच्छा लगेगा, यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है वहां ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी।
1: अच्छा भाई, अच्छा चलेंगे। अभी खाना तो खा ले।
0: खा तो रही हूँ बाबा, आप ही ना।

0: ये तो बड़ी अच्छी जगह है, कभी यहाँ आए ही नहीं।
1: अरे बढ़िया, मैं एक आध बार ही यहाँ आया हूँ। सोचा कि आज गुरुजी के पास जाने से पहले थोड़ा मंदिर भी होते चले।
0: अच्छा किया बाबा।
1: क्या मांगा तूने भगवान से?
0: वो तो सब जानते हैं, भगवान है ना। हाँ, ये जरूर मन चाहता है कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे।
1: वाह।
0: सब सुखी हो, खुश रहें।
1: अरे वाह, गुणवान हो गई है मेरी बिटिया।
0: हाँ। हाँ, बिना बाबा। चलिए गुरुजी के पास चलते हैं।
1: हाँ, चलो।
2: अरे आओ आओ जबनिया आओ।

0: अरे वाह,
1: राम राम, प्रणाम गुरु जी।
0: राम राम राम, झुल्लन को भी साथ लाई हो
1: जी। गुरु जी, हमें जो ज्ञान की बातें बताते हैं ना, वो बाबा भी सुन लेंगे, अच्छा लगेगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
2: कोई असुविधा हो तो बता देना गुरु जी, बिल्कुल बेधड़क।
0: नहीं नहीं भाई, बुजुर्ग आदमी हो, दिन भर काम करते हो, मैंने सोचा आराम करते, पढ़ने की धुन तो इसे सवार है ना।
1: क्या बाबा, तुम्हें तकलीफ होगी यहाँ बैठने में?
2: अरे भाई, तकलीफ होगी तकलीफ होगी तो चला जाऊंगा।
0: चलो चलो, ठीक है ठीक है, तुम लोग बैठो हैं। देखो, मैंने एक नाटक मंगाया है जिसे मैं तुम्हें रेडियो से सुनवाऊंगा।
1: रेडियो से?
0: अरे भाई, इसमें रेडियो भी है और टेप भी।
1: अरे वाह।
0: हाँ, टेप चलाऊंगा तो नाटक सुनाई देगा।
2: हाँ, जी, जी, सुनाइए जी। हाँ, सुनाइए गुरु जी।
1: जी गुरु जी।
0: पहले भाई तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं।
1: अच्छा।
0: कि इस नाटक में एक अंग्रेज एक किसान के साथ किस तरह बात करता है, उसके क्या इरादे क्या तौर तरीके हैं, ध्यान से सुना।
1: हाँ। जी।
0: सब समझ में आ जाएगा है
1: जी।
0: और ना समझ में आए तो तुम मुझसे बाद में पूछ ले।
2: जी गुरु जी।
1: जी गुरु जी। हाँ।
3: हमारा कंपनी ने मुगल बादशाह से लगान और माल भाड़े पर चुंगी जो तुम किसान और व्यापारी लोग देते हो लेने का अधिकार खरीद लिया है।
2: ये किसे खरीदे?
3: अरे तुमसे लगान और चुंगी लेने का हक हमने ले लिया है, समझा? हम तुमको 1 से 5 साल तक जमींदारी का काम दिया, पर तुमने कुछ नहीं किया।
4: हुजूर, मैं दूसरे किसानों से लगान वसूल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या बताऊँ, इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब है हुजूर।
3: नो नो नो नो नो, वो हम कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती लगान ले लो, नहीं देता तो जमीन छीन लो।
4: आप क्या कह रहे हैं हुजूर, जमीन पर तो हमेशा किसानों का अधिकार रहा है, और तो और नवाब साहब भी किसानों का खेत जब्त नहीं कर सकते।
3: जैसा हमने बोला वैसा करने का, जमीन छीन लो।
2: जी,
3: तुम नहीं कर सकते तो हम किसी और को जमींदार बना देगा।
2: क्या?
3: यस, अब तुम जा सकता है, यू कैन गो।
1: गुरुजी, बड़े जालिम है ये अंग्रेज।
0: हाँ जमनिया, बड़े जालिम थे ये अंग्रेज, उनका चरित्र बताने के लिए ही ये नाटक बनाया गया।
1: जमींदारों से अंग्रेज ऐसे बात करते थे?
0: अच्छा, अब तुम ये बताओ
1: जी
0: कि जब किसान से अंग्रेज ने लगान न देने पर जमीन जब्त करने को कहा था तो किसान ने क्या उत्तर दिया था?
1: ठीक ही जवाब दिया, ऐसे में तो नवाब की जमीन जब्त नहीं कर सकते।
0: शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक समझा।
2: सही में मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
0: अरे चुल्लन, हाँ। तुम्हारा भी जब मन हुआ करे तुम भी आ जाया करो।
2: जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम
1: प्रणाम गुरुजी।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आईलैंड्स के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन, निवेश प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC टेक के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि खेलो इंडिया योजना से खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 होने को हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कारम भारतीयों, शाम के 5 बज चुके हैं और समा अपनी गहरी बाहें खोले बादलों से उतरकर बारिश की ठंडी शीतल हवाओं में घूमते फिरते नाचते गाते आ चुका है सुनने आप सभी के साथ हमारा पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मेरा नाम है पहल टेवरे, आपका अपना पसंदीदा रेडियो साथी, और हर बार की तरह हम लेकर आए हैं आप सभी को सुनाने बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें। पर आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज इतना फीका तो नहीं हो सकता, तो चलिए इस रंग बिरंगी शाम का रंग और गहरा करते हैं और आप सभी सोने जैसे और खूबसूरत लिसनर्स को सुनाते हैं आज का पहला गीत। ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत एन्नाकुणा फिल्म ओके जानू से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। दोस्तों, दृष्टि हमारे जीवन का वो खास हिस्सा है जिससे आपके मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आशाएं, सपने, रोशनी बंधे हुए हैं। रात के अंधेरे में जैसे नानी घर में से लाई हुई लालटेन जला दी हो, ऐसी है दृष्टि। सर्दी में जैसे दिवाली का दिया लगा दिया हो, ऐसी है दृष्टि। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुझे पता है, सुबह के अखबार, दूध वाले रमेश काका से पानी मिलाने पर झगड़ा और पिंकी बिल्लू को स्कूल के लिए उठाने से भी पहले हम क्या करते हैं? भोर नव की पुकार के साथ हम सभी पलकों पर से नींद का बोझ हटाए आंखें खोलते हैं और हमारी पूरी जिंदगी इसी में समझ जाती है। धूप की वो एक किरण जब खिड़की से आती है तो मां की साड़ी का रंग दिखता है। खिड़की के बाहर डाल पे चिड़ियां गीत गाते दिखती हैं। सड़कों पे बच्चे स्कूल जाते दिखते हैं। बस पिंकी और बिल्लू उनमें नहीं है क्योंकि वो अभी भी सो रहे हैं। पर अब जरा ठहर कर अपनी आंखें बंद करके उस अंधेरे को महसूस करें। ना रंग ना रोशनी, बस थका देने वाला अंधेरा। हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, दोस्तों में कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस जिंदगी के रंगों को महसूस तो शायद कर पाते हैं पर देख नहीं पाते। कोई एक बच्चा है जो अपनी गेंद का रंग नहीं देख पाता। कहीं कोई किसान है जो अपनी मेहनत से उगाई फसल की हरियाली नहीं देख पाता। कॉर्निया इन्फेक्शन से ग्रस्त कहीं दूर एक बहन है जो राखी के दिन अपने भाई के चेहरे की खुशी नहीं देख पाती। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये फिल्मी कहानी लगे, पर दरअसल ये हमारे भारत के 25 लाख से ज्यादा लोगों की हकीकत है जो अपनी जिंदगी का शायद हर एक दिन एक ही उम्मीद में निकाल देते हैं। उम्मीद एक आय डोनर की। इसी हकीकत को ध्यान में रखकर हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है नेशनल आई डोनेशन फॉर्टनाइट, यानी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। हम जानेंगे इस बहुत ही खास मुहिम के बारे में, पर उससे पहले आइए सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत। ये

दोस्तों, नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है, जो आज से शुरू हो रहा है। हमें लगता है कि ये मुहिम बस एक अभियान नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक जरिया है हमारे जाने के बाद भी इस रंग बिरंगी दुनिया में रोशनी बिखेरने का। हम जानते हैं कि आप सब में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस नोबल कॉज से जुड़ना तो चाहते होंगे, पर हिचकिचाहट और सवालों की एक बहुत बड़ी और लंबी दीवार उन्हें आगे नहीं आने देती। तो आज इस हिचकिचाहट को हटाकर इस आई डोनेशन प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नेत्रदान मृत्यु के बाद ही हो सकता है, यानी आज आप बस एक संकल्प लेते हैं, अपनी मुट्ठी बंद करके एक विश्वास जगाते हैं, एक बहुत ही सिंपल फॉर्म भरते हैं और वादा करते हैं कि अपने जाने के बाद भी किसी और के सपनों का सहारा बनेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर्स के पास सिर्फ 6 घंटों का समय होता है इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने में, तो अपने परिवारजनों को जरूर बताएं कि आप एक प्राउड डोनर हैं। वेयर दैट चिप ऑन योर शोल्डर बडी, कि आपकी आंखें 2 लोगों की जिंदगियां सवार रही हैं। तो इसी के साथ आज ही जाकर अपनी जिंदगी का सबसे खास कदम पूरे जुनून से उठाएं और किसी की जिंदगी में रोशनी रंग भरने वाले एक फरिश्ते बन जाएं। इसी खूबसूरत मोड़ पर आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत एक जुनू, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, जिसे गाया है विशाल ददलानी ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों, आइए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी, नाम था प्रिया। लगभग 19-20 साल की ही होगी। पास के ही कॉलेज में दाखिला भी था, और वैसे भी फर्स्ट सेकेंड ईयर में कौन लेक्चर अटेंड करता है। तो बस कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसी मजाक और चिप्स के पैकेट यहां वहां खाली करके फेंकते रहना। एक रोज सिमरन सरवट नहर के पास से पैदल जा रही थी, साथ ही में प्रिया भी थी। घर वापस आते आते प्रिया को याद आया कि प्रिया के भैया ने 12th में बताया था कि सरवट नहर में मछलियां तैरती थी। प्रिया वहीं चलते चलते थप से रुक गई और अपने आंखें बड़ी बड़ी करके उम्मीदों और नजारों को उनमें भरे मछलियों को ढूंढने लगी। माथे का सूरज अब उफक पे बैठा तिरछी निगाहों से प्रिया को देख रहा था, पर प्रिया को वो मछलियां नहीं मिली। घर आके भैया पे झूठी कहानियां सुनाने का वर्डिक्ट तो सुना ही दिया, पर उसके बाद प्रिया अगले दिन अपने एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर से मिलने गई और पूछा, सर, सरवट नहर की मछलियां का क्या हुआ? वो दिखती ही नहीं है आजकल। प्रोफेसर शर्मा ने एक गहरी सांस ली। सभी बच्चों को एक तरफ कर सरवट नहर की तस्वीरें दिखाई। वाह, जो नहर कभी चंचल नदी का भाग हुआ करती थी, वो आज प्लास्टिक और वाटर पोल्यूशन के कारण सिर्फ एक नाला बनकर रह गई है। बस उस एक लम्हे में

प्रिया की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। आज वो अपने कॉलेज का और अपने शहर का भी सबसे बड़ा प्लास्टिक फ्री मूवमेंट चला रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि एक बदलाव की भी है। एक बदलाव जो आया है हम युवाओं से, एक सोच से, एक जिद से। जिद उसे पाने की जो हमसे खो चुका है, एक प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट। हम सब में वो जज्बा है दोस्तों, वो जुनून है कि हम इस कहानी को हकीकत में बदल सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के समय की हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जो हमारी लाइफस्टाइल और साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम को भी दिन खराब करता जा रहा है। तो चलिए, इसी के साथ आज एक संकल्प लेते हैं और वादा करते हैं कि हम उस चीज को वापस लेकर आएंगे जिसे हमने खो दिया है। अपने पर्यावरण को बचाएंगे, उसे साफ करेंगे और आने वाला कल बेहतर बनाएंगे। इसी बात पर जाते जाते पेश है आज के हमारे सभी बहुत खास लिसनर्स के लिए हमारा अगला गीत, ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत तू ही है, फिल्म डियर जिंदगी से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। तो दोस्तों, आज हमने जाना और महसूस किया एक नहीं बल्कि दो दो जिम्मेदारियों को। जिम्मेदारी एक रंग बिरंगे आज की, सबसे अपने जैसे स्वभाव की, आशाओं की, दृष्टि की, एक छोटी पर बहुत बड़ी आस की। साथ ही हमने जाना आने वाले जनरेशन के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी। यूनेस्को के अकॉर्डिंग इंडियन ओशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लीनेस्ट एंड प्रिस्टीन ओशन। हम भारतवासियों को ये आस करनी चाहिए कि वो ऐसा ही रहे। आज से कुछ समय पहले मैंने कुछ न्यूज़ देखी थी जहाँ पे जो इंडियन ओशन टॉर्टोइज हैं उनको प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से बहुत खतरा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर अलर्ट्स भी जारी किए हैं। तो चलिए, जब भी हम टूरिस्ट बन के कहीं जाएं, ये भी ध्यान रखें कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ऐसे बहुत से सुंदर और भी जीव जंतु हैं जो इसके भोगी हैं। तो इसी के साथ इस जिम्मेदारियों को साथ रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ निभाते हैं और चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। अपना ध्यान रखें, पानी पीते रखें, आसपास अपने परिवारों का ध्यान रखें, जानवरों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं पहल टिवरे आपसे लूंगा इजाज़त। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने

0: में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।